सोचेंगे कि तुम्हें प्यार करूं कि नहीं। कुमार सानू ने आपको सुना ये फिल्म दीवाना में से निकाल कर ये गीत हमने पेश की। थोड़ी बहुत मुझे याद ये है ऋषि कपूर और दिव्या भारती की फिल्म। दिव्या भारती एक बहुत जवां उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया, हेल यंग ओवरलीड। मुझे पता नहीं कितना देखना पड़ेगा, लेकिन सेस हेल यंग ओवरलीड दिव्या भारती। चलो हम आपको अब ये गीत सुनाते हैं इस तरह से। जी नहीं, गीत सुनाने से पहले, जी हाँ, गीत सुनाने से पहले फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये गीत सुना ही दूँ। चलिए ये गीत आपको सुना ही दूँ, और वो है इस तरह से।

फिल्म पूर्णिमा में से निकाले हैं। मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी मिलके आपको सुनाए हैं 1966 का ये फिल्म, निकिन सेंसेस का ये फिल्म और हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो है ये भी लता जी, ओनली लता जी, लता जी की आवाज़ में ये धमाकादार गीत हम आपको सुनाते हैं। आपने सुने हमने कहा धमाकादार गीत, जी हाँ वास्तव में बहुत धमाकादार गीत है। ये भी 1966 का है, फिल्म आए दिन बहार के, फिल्म आए दिन बहार के में से लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के सांच पर। और ये लता की आवाज़ में इसे ध्यान से सुनिए, गीत आपने बहुत बार सुने होंगे लेकिन आज स्पेशल सुन लीजिए, क्योंकि ये बात नहीं कि गंगा चला रहा है, जी नहीं, लेकिन ये गीत की धुन जो है और जिस तरह से लता जी ने ये गीत गाए हैं, वाह बहुत कमाल के।

फिल्म आए दिन बहार के ये गीत हम आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर और लता जी की आवाज में टाइटल सॉन्ग आए दिन बहार के निकटिन सेशन सेस्तक का ये फिल्म। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है, माइटी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। जी हाँ, लता जी के साथ 1961 का फिल्म छाया में से निकाल कर।

चोरी चोरी और ये गीत हम आपको सुनाए हैं सलील चौधरी के साज पर, मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये भी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज है। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर फिल्म साजन में से 1969 का ये गीत का ये गीत हमने एक बार कहा था, पता नहीं कब, लेकिन एक बार फिर कह देते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है, जोड़ी है म्यूजिक डायरेक्टर जो सबसे ज़्यादा फिल्म में साज दी है, 454 फिल्मों में इन्होंने साज दिए, सबसे ज़्यादा म्यूजिक डायरेक्टर जो फिल्मों में साज दिए। चलिए हम आपको सुनाते हैं फिल्म साजन में से ये गीत। लता जी के साथ

रेशम की डोरी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर 1969 निघ्न से अस्तक का ये गीत हम आपको सुनाए हैं लता जी और रफ़ी साहब के आवाज़ में। रेशम की डोरी इसका सारे भी बनता है, जी हाँ, रेशमी साड़ी। चलिए

ऐ प्राणी, संसार में सुख दुख, भाव अभाव, होना न होना, लाभ हानि और जीवन मरण, ये सब सभी प्राणियों को बारी बारी से प्राप्त होते हैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हारी सुबह शाम की पूजा तभी स्वीकार करता हूँ जब तुम्हारे दिन के काम काज में एक भी झूठ नहीं होता।

मित्रों, जो लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं, उनसे मेरा जी घबराता, क्योंकि उनके कहने और करने का कुछ ठिकाना नहीं है।

संसार की तरफ चलने वाले का कोई भी साथी नहीं होता, पर भगवान की तरफ चलने वाले के सब साथी हो जाते हैं।

भाइयों और बहनों, जहां साहस और परमात्मा साथ है, वहां कठिनाइयां वे समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। यह मेरा और मेरी पत्नी रा

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्यषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सुनने वालों, सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए मैं संजय जो आपके साथ जुड़ गए हैं, कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करूंगा और कुछ सुंदर सुंदर भजनों के साथ।

जो बीमार है भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिसके घर पे एक नया शिशु ने जन्म लिया है उन्हें बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनका आज सालगिरह है उन्हें बहुत सा हैप्पी बर्थडे। जो अपने तैयारी कर रहे हैं कुछ शिक्षा दीक्षा लेने और देने को, तो उनको भी माता सरस्वती को ओर से शुभकामनाएं प्रस्तुत है। जो अपना तैयारी कर रहे हैं नौकरी के ओर, तो उनको ओर से ये कहना चाहूंगा, हर बार की तरह की गांधी जी को भूलना नहीं। ये मत सोचना कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। अगर ये सोच जा आपको रहेंगे तो ये, अगर मैं आपसे ज्यादा ना कह दूं तो ये जरूर स्पर्श है कि आप अपना समय पे पेंशन को प्राप्त कर सकेंगे।

सुनो लो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर सा दोहा हम सबके लिए लिख गए हैं। और तुलसीदास कह गए हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान। कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान।

इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ यही है कि जब तक मनुष्य के मन में काम, क्रोध, अहंकार और लालच भरे हुए है, तब तक एक ज्ञानी पंडित और एक मूर्ख में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों समान होते हैं।

स्वस्ति माहौल के हवास में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और हमारे सभी कर्मचारियों जो हमारे सभी कोलेग खास होते हैं उनके ओर से एक सुंदर सा भजन के ओर बढ़ेंगे। भजन का बोल दो तीन है जिंदगी।

आई जगत में काई करो, यानी कहने के तात्पर्य ये है, हम जगत में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करके जाए जिसे हमें कोई बाद में कुछ बातचीत करके, ऐसा ना हो कि हमारा जो कर्म किए हमने वो कर्म ऐसा है जिसके बारे में लोग नेगेटिव बात करते रहे। दोस्तों सुनने वालों, बातचीत, बातचीत ये दो शब्द ही है, पर की जाए तो दिलों को कई मैल धुल जाते हैं। एक सुंदर सा भजन और हम चलाने वाले हैं जो हमारे स्टूडियो यानी फाउन रेडियो का सभी कोलेगास की ओर से।

स्वस्ति मिश्रा के आवाज में ये सुंदर सा भजन कि तेरी शुक्रिया है सुबह की पहली प्रणाम कि हे ईश्वर आपकी कृपा से एक नया सुबह देखने का सौभाग्य मिला है। आपकी आभार हूँ मेरे सभी मित्रों और सभी संबंधियों, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और दीर्घ आयु को प्राप्त करे। अगला भजन की ओर हम बढ़ने वाले हैं सुनने वालों, और ये भजन भी सभी कोलेखास हमारे डायरेक्टर कुमार घिराव जी के ओर से, जॉनी सुरजबाली जी के ओर से, शांता खेमाई, रजेश बदलू, राजन द्वारका, प्रदीप फेराई, विजंती नाथू, रोसिता गिरजा सिंह, सुरेन भगवान दीन, बबली आसरा, रोमियो हाउस, संजय भगवंत, गंगा चंद्र जी और यूसुफ सीतू, बीबी साहिबा रहीमक्स जी, श्याम पूरन, अनुराधा चंद्र जी और राजेंद्र सिंह हैन और अनिल सरजुग जी के ओर से ये सुंदर सा भजन।

जब कुछ समझ में ना आए तो सीताराम गाइए, और यही संदेश, जो सुंदर सा संदेश हमारे फाहुन का सभी कोलेखास की ओर से रखा गया, और एक मैसेज जो उत्तम नगर भारत से आया है, ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है, और संदेश ये है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। तो ये सुंदर सा संदेश भाई ईश्वर जी जो उत्तम नगर भारत से और ये संदेश को भेजे है, एक बार और उसे दोहरा दिया जाता है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। एक और सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

होगा वही जो राम ने लिखा है। ये सुंदर सा भजन हम सब सुने अजय तिवारी के आवाज में। सुनने वालों, हमारे पास मोहन गार्डन भारत से भी एक और मैसेज आए है कि गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा होगा उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। ये सुंदर सा मैसेज श्रीमती सुनील जी जो मोहन गार्डन से भेजे है। बहुत खुशी के कार्यक्रम को अन्य और स्थानों पे भी सुना जाता है। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और एक और सुंदर सा भजन के ओर बढ़ रहे हैं।

जय किशोरी और सोनू निगम के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने जो हमारे देश में सफर करने को आए हैं। हार्दिक से स्वागत किया जाता है और कहना ये चाहूँगा कि हमारे देश में हॉलैंड में कितने मंदिरों हैं, जैसे कि डेन हाग में राधे कृष्ण मंदिर, देव मंदिर जो हर रविवार को और लगाया जाता है शाम में 2 बजे से 5 बजे तक, मंगलवार को राधे कृष्ण मंदिर जो 6 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, सेवाधाम मंदिर जो डेन हाग शहर में वो भी शाम को लगाया जाता है हर रविवार को, और इसी प्रकार से सुतमेर शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि हर मंगलवार को लगाया जाता है 6 बजे से 8 बजे तक, दमेरन शहर उत्तराखंड में गणेश मंदिर जो भी हर मंगलवार को 4 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, इसी तरह से अलमेर में विष्णु मंदिर जिसे हम गोल्डन टेंपल के नाम से जानते हैं वो भी हर रविवार को 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। ऐसे भी हम लोग के देश में जो सुंदर सुंदर मंदिरों का स्थान है जहाँ पर हम सब जाकर के सत्संग आदि कर सकते हैं और कथन वहाँ हर अलग मंदिर दिन पे कथा को और जो व्यास भगवान का प्रार्थना पूजन आराधना किया जाता है संदेश को रखा जाता है। रोटरडम शहर में शिव मंदिर और शिव मंदिर अरनहेम में भी हर रविवार को जो सुबह में रोटरडम में और सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक, और अरनहेम में जो कि 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। हम एक और भजन की ओर बढ़ेंगे, राधा रानी का चरण जो कि चित्रलेखा जी के आवाज में रखने वाले हैं।

राधा रानी के चरण प्यारी प्यारी, चित्रलेखा जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। दोस्तों, हम एक और मैसेज जो प्रदीप जी जो उत्तम नगर से हमारे लिए भेजे हैं, और ये मैसेज का बोल ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव और समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। तो भाई प्रदीप जी को बहुत सा और नमन करता हूँ, और ये सुंदर सा संदेश रेडियो पर रख दिया गया। हम एक और सुंदर से भजन की ओर बढ़ेंगे। सुनने वालों, जया किशोरी जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन।

सुनने वालों, मैं संजय आपके साथ जुड़े हुए और ये दावा के साथ कह रहा हूं कि आप चुने फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं। एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं संजय, क्योंकि पुलिंग स्त्रीलिंग में तो कभी गलती भी हो जाता है। विश यू अ वेरी गुड डे।

अगर आपका दिन एक शुभ दिन हो, यही आशा लेकर हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जुड़ गए हैं।

धुरंधर फिल्म से निकाला गया कि दिल ही ना माने ये, और कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुना है, ज्यादा अच्छा ही होना भी गुना है, पता नहीं चलता लोग इज्जत कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक और सुंदर सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे और इसी प्रकार से नए नए न्यू सॉन्ग्स के ओर हम आज बढ़ चले हैं। देखते हैं क्या और नया गीत हमारे लिए है।

चुनरी चुनरी, ये सुंदर सा गीत जो कि एक न्यू यश में रखा गया। और दोस्तों सुनने वालों, भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देते हैं। तो बस इस पे थोड़ा से ध्यान देना। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और सुंदर दिवस आपको रहे। Een hele vreugdige en gelukkige dag toegewenst.

क्यों में तो थोड़ा बटन ज्यादा लेफ्ट की ओर घुमा दिया था या राइट की ओर पता नहीं, पर लाल जल रहा था। आप अपना रेडियो का बटन किस ओर घुमा रहे हैं, बस ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ।

सुंदर संगीत जो निकाला गया एक फिल्म जो 2025 में रिलीज हुआ। कहते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाता है, जिंदगी बहुत आसान हो जाता है जब परखने वाले नहीं समझने वाला मिल जाते हैं। एक और नया सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे सुनने वालों, और आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। मौसम पता नहीं कैसे है, गर्मी है या सर्दी है, पर जरूर अपना चलने का व्यवस्था आज का भूलना नहीं, क्योंकि कहा गया है कि रोज हमें कम से कम शेष दर्शन स्थापन तो करना ही है, तो उस पे जरूर ध्यान देना। और यहाँ से फाहुन से हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे।

0: वेलकम टू द जंगल, ये फिल्म जो 2026 में है और इसमें से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो भोजपुरी में गाया गया है। और कहते हैं कि कुछ पंजाबी गीतों जो फिल्मों में चलाया जाता है आजकल, देखो भोजपुरी भी खूब जोर तोर से सहयोग दे रहा है बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री में। भोजपुरी जो सुरिनामी, हमारे सुरिनाम भाषा से ज्यादा मिलते जुलते है।
1: के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है।

पास आऊंगा। कहते हैं दोस्तों सुनने वालों की देखकर दूसरों की आनंदित होना स्वस्थ मन की पहचान है। देखकर दूसरों की आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। ये सुंदर सा संदेश रखने वाले ईश्वर सिंह जो भारत से हमारे लिए ये मैसेज को भेजा और आपके तक पहुंचा दिया गया।

एक फिल्म जिसमें आयुष्मान और भूमि जी ने अपना कला सा प्रदर्शन दिए। दोस्तों कहते भी कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है। एक और सुंदर सा गीत को मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है।

ग्रेट सॉन्ग हल्लो, जिसमें काम किए रामचरण, बुच्ची बाबू, श्रुति हसन और जानवी कपूर ने। तो ये बात कहा जाता है कि समय और बचपन दोनों ही यादों में सबसे सुंदर लगते हैं। तो क्यों ना हम एक और सुंदर सा सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं।

आर्यन खान और राश मीका मधाना अपना कला से प्रदर्शन दिया। ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया न्यू सॉन्ग 2026 रोमांटिक सॉन्ग जो कि निकाला गया दिल पे तेरा नाम। दोस्तों सुनने वालों, हम इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। और भारत मोहन गार्डन से भाई ईश्वर सिंह जी ने यह संदेश को भेजा है कि दुनिया में दो ही पौधे ऐसा है जो कभी मुरझाते नहीं। पहला जो निस्वार्थ प्रेम से और रहे, और दूसरा जो अटूट विश्वास।

तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर ने ये फिल्म में काम किए। दोस्तों सुनने वालों, मैं आपके साथ कुछ समय तक और व्यतीत करूंगा। एक और सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए हैं, क्यों ना उस ओर बढ़ते हैं कि मुझको तुमसे प्यार हुआ।

इमरान हाशमी ने फिल्म में काम किए। दोस्तों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, 2400 घंटा आपके साथ, जो हम सब जुड़े रहते हैं, हमारे सभी कोलेखा साथी अपने अपने समय पे और यहाँ उपस्थित होकर के कार्यक्रम को रखते हैं। किसी ने मेरे पास ये संदेश को भेजा है कि हद से ज़्यादा सीधा सादा होना भी ठीक नहीं है, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। तो आप खुद समझदार हो, समझ जाना क्या संदेश देना चाहते हैं। जो व्यक्ति ने हमें हमारे पास ये संदेश को भेजा है, एम फी नाम है उनका, हम एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।

0: जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। रूबरू मिलने की इच्छा करता है लेकिन शब्दों से ही बयां करता हूँ। आज के मेरे फाउन हिंदुस्तानी के रेडियो के श्रोता गणों को यानी राजेंद्र सिंह का हार्दिक नमस्कार और अभिनंदन। आज का जो प्रोग्राम है उसके विषय में हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में और पितृपक्ष के समय के बारे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सब हमारी रिसर्चर हैं, बहुत गहरे गहरे से खोज खोज के लाते हैं और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो शांता जी, आप कुछ कहना चाह रही है?
1: हाँ जी राजेंद्र जी, जाना था हमसे दूर, जाना था हमसे दूर, बहाने बना लिए, अब तुमने कितने दूर ठिकाने बना लिए। मेरी आवाज़ के सुनने वालों, सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम। और यहाँ से जैसे राजेंद्र जी कहा कि आज की ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम यहाँ से हम लेकर उपस्थित हो गई है,
0: तो क्यों ना शांता जी, जिनका दिल उदास है उसके लिए, उनके लिए कोई एक भजन चलाया जाए।
1: हाँ बिल्कुल, यहाँ से चला दे।
0: उदासी मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार।

0: श्री राजेंद्र जी, राम जी का और जो कृपा है तो जरूर हम सब पे है। सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए शांता जी ये बताइए कि क्या आज का विषय है।
1: जैसे हमने बताई शुरुआत में तो आज के विषय है पितर पक्ष के बारे में, तो उसी के विषय में हम आप सबको यहाँ तैयारी करी है और यहाँ से हम अपने सुनने वालों को पहुँचाएंगे, बताएंगे कि पितर पक्ष के बारे में और उसके क्या सब सुविधा कर सकते हैं।
0: राजेंद्र जी, अगर जब देखा जाए कि जब ये त्योहारों में एक त्योहार ये पितृ का त्योहार जब आ जाता है ना
2: जी,
0: लोग पंडितों को फोन करने लगते हैं और पूछने लगते हैं, खास करके जिनका परिवार में हाल ही में कोई गुजरे हुए है तो वो पूछने लगते हैं कि क्या मैं ये पार्व श्राद्ध जो है पितृपक्ष जो हम सूरीनामी में कहते हैं ना, तो उसे उसमें हम अपने पितरों के लिए कुछ कर सकते हैं। ये प्रश्न हर बार आता है और हर बार पंडितों जनों से ये बढ़िया से संदेश दिया जाता है, पर उसके अंतर्गत में आज हम लोग के कुछ और जानकारी मिल सके तो बड़ा बढ़िया होता।
2: आज बहुत सारी जानकारी इसी बारे में है, इसीलिए ये प्रोग्राम में आज ये चीज़ रखे हैं। पितरों के लिए इसी समय जो समय है वही समय कर सकते हैं।
0: पर राजेंद्र जी, बात ये हो जाता है लोग मांगते हैं करने को
2: जी,
0: यहाँ पर ये भी संदेश हो जाता है कि कभी काल के कोई ऐसे बात करते हैं कि मैं अपने पितरों के अंतर्गत कुछ करना चाहते हूँ। पितरों है जो इस समय जो दुनिया को छोड़ चले गए, जिनके कृपा से हम लोगन है, यानी कि हमारे पितरों का नाम, तो ऐसा जब देखा जाए तो आजकल लोग से पूछा जाए कि भाई पिता का नाम, तो शायद पिता का नाम सभी जानते होंगे, पर पिता का नाम, मृत पिता का नाम, ये तो बस मुश्किल होने लगता है। और यहाँ तलक तो हम यह नहीं कहने वाले हैं कि जो बीच भारत को छोड़ करके और सूरीनाम 150 साल पहले गए थे, उतना दूर तो दूर की बात है। लोग अपना खुद का गोत्र और अपना खुद का पितृ का नाम गमन यानी कि उस पर चिंता ही नहीं करते, और पितृ दोष जब लगते हैं तो औरों से जा जा करके कितना लूटे जाते हैं, उसके बारे में तो आज कोई चर्चा नहीं होगा। चर्चा बस यही के बारे में होगा कि हम क्या कर सकते हैं अपने पितरों के अंतर्गत।
2: जरूर, लेकिन जब आपने ये बोल ही लिया कि अपने पितरों के नाम याद होना चाहिए, तो जब आप भारत में जाते हैं तीर्थ यात्रा में, जैसे हरिद्वार है और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जहाँ भी जो धाम है वहाँ पे जब भी आपके कोई पिछले पितर गए होंगे, लोग गए होंगे, आपके दादा परदादा कोई भी गए होंगे, तो वहाँ से वो खाता होता है एक पंडितों के पास, इतना बड़ा खाता,
0: पंडा के,
2: पंडा,
0: हाँ जी,
2: तो पंडा के पास सब लिखा रहता है कि आपके जितने लोग यात्रा गए वहाँ पे गए, वो पूरा रजिस्ट्रेशन रहता उनके पास, आपका दादा का नाम ये था, परदादा का नाम, इसका नाम, उसका नाम, उसके उसका नाम, मैंने खुद जाके देखा है। तो जब गए वो डेट लिखी रहती कब गए थे वो, तो उन्होंने क्या क्या कराया था वहाँ पे पितृपक्ष के लिए और क्या कराया था, सब चीज लिखा रहता है
0: उसमें, मिल जाता है
2: उसमें, मिल जाता है खाता पंडित पंडा के पास।
0: इस बात पे ध्यान देना कि आप, हम लोग कार्यक्रम बनाते हैं ज्योति का प्रकाश, और इसमें जरूर कुछ ना कुछ अपना जीवन के ज्योति के अंतर्गत में कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, उसमें और प्रकाश जरूर आएगा। और जब आप अपना पुरखों का अपना, और जैसे कि भाई राजेंद्र जी जो हम सबको संदेश दे रहा कि कहाँ पर आप जा करके उसका और अपना यानी कि पितरों तथा अपने पुरखों के बारे में, अपने गोत्र के बारे में पा सकते हैं। राजेंद्र जी, देखते हैं कि शांता जी पिटारा से क्या भर के लाए हैं।
2: जरूर शांता जी,
0: हम सब पर
2: अपना पिटारा, तो शांता जी का पिटारा हमने यहाँ सेट कर रखा है।
1: राजेंद्र जी सभी सेट करके रखिए, अभी आपको सुनाएगा
2: जी।

0: आज हमारा विषय है राजेंद्र जी, जो कि पर्व श्राद्ध अंतर्गत, और उसके बारे में हम सबको कुछ जानकारी को हम लोग लेकर आए हैं दोस्तों, और देखेंगे कि क्या हम सबके लिए और हमारे विशेषज्ञ लोग तैयार करके रखे हुए हैं।
1: हाँ जरूर।
0: तो राजेंद्र जी, आपके पास क्या संदेश है?
1: सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि पितृ चरण में नमन करी, ध्यान धरी दिन रात, कृपा दृष्टि हम पर करी, सिर पर धरे दो हाथ।
0: सिर पर धरे दो हाथ। तो राजेंद्र जी, पितृ
1: दो हाथ नहीं, सिर पर धर दे हाथ।
0: हाँ,
1: धर दे
0: तो वो पितरों ऐसा अपने पुत्रों के कर सकते हैं।
1: हाँ, पितरों का जो आशीर्वाद होता है वो पुत्रों पे बहुत लगता है, उसी आशीर्वाद से सब लोग बहुत फूलते फलते हैं।
0: पर राजेंद्र जी, ऐसा होता है लोग तो डरते हैं अपने पितरों के कार्य करने के लिए।
1: नहीं, डरना नहीं है पितरों कार्य करने।
0: वो कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि भाई मैं अपने पितरों के लिए कुछ करना चाहते हूँ, और जरूर करने का इच्छा भी रखते होंगे, पर उसमें ये प्रश्न करते हैं कि भाई अगर जब मैं ये करूँगा तो मेरे बच्चों को ये भी करना पड़ेंगे।
1: तो आगे बढ़ते हैं इसी में, ये कदम्ब है आपका, ये कुटुंब है आपका, आपका परिवार, आपके आशीर्वाद से फले फूले संसार। तो पितरों के आशीर्वाद से तो हम लोग हैं, तो कैसे डरने का विषय है?
0: पर लोग तो डरते हैं।
1: किस बात से डरते हैं?
0: और खास करके राजेंद्र जी, मैं तो देखा हूँ कि कहीं पे गए थे, कहीं पे गए थे, किसी का मृत्यु हो गया था, तो वहाँ हम लोग सत्संग करते हैं ना, तो जाकर के रामायण पाठ कहीं और गरुड़ पुराण पाठ होता है, तो वहाँ गए तो वहाँ लाइट ऑफ हो गया।
1: हो,
0: अब लाइट ऑफ हो गया, कैसे लाइट ऑफ हुआ ये पता नहीं है, पर लोग डर गए। जैसे ये पितर के बात होता है इसमें, या लाइट के बात होता
1: है? नहीं, पितर का बात नहीं,
0: के बात होता है,
1: इलेक्ट्रिसिटी की बात है। हो सकता है उस समय लाइट चली गई हो, या कुछ ड्रिप हो गया हो, ट्रिप हो गया हो, तो उसका पितर का कोई बात नहीं।
0: और राजेंद्र जी, बात ये भी है कि ये कार्यक्रम जो चल रहे हैं, आज का विषय रखा गया है, तो इसमें भी संदेह है कि पितर और प्रेत, इसका अंतर क्या है? तो अभी ये हम सबको भी सुनने को मिलने वाले हैं। तो और आ चुके हैं
1: सांड्रा जी
0: आ करके पहुंच गए हैं स्टूडियो में,
1: तो
0: भूल जाए कि क्या हम सबके लिए।
1: तो दो लाइन और पितरों के बारे में कह देते हैं। भूल चूक सब क्षमा करी, करी मेहर भरपूर, सुख संपत्ति से घर भरे, कष्ट करे सब दूर। तो क्यों ना एक छोटा सा हम भजन चला दें।

0: अवनित हित परिवार, तो पितरों के समान आज हमारे बीच सांड्रा जी भी उपस्थित हुई हैं। तो आप कुछ सुना है कि बहुत बढ़िया चीज लेके आई हैं। सांड्रा जी बताइए।
1: आप सबको मेरा भी नमस्कार। तो एक लाइन मैं भी बोलना चाहती हूँ।
0: जरूर।
1: पितरों के लिए, आप हमारे हृदय में, आपके हम संतान, आपके नाम से हैं जुड़े मेरे हर पहचान। आपके ऋण बढ़े सदा, नहीं चुके जाए सात जन्म भी हम पढ़े, वेद पुराण बताए। तो आप बताइए राजेंद्र जी, मैंने क्या कहा?
0: आपने वेद पुराण की बात कही, क्या और आपने क्या कहा?
1: मैंने कहा कि आप हमारे हृदय में हैं।
0: अच्छा, हृदय में हैं, पुराण में
1: संतान, आपसे जुड़े हैं, आपकी पहचान है, पितरों से हमारा पहचान है। ये ऋण बढ़े सदा, नहीं चुकाए जाए सात जन्म भी हम पढ़े, वेद पुराण बताए।
0: हाँ, आपने बताया कि जो पितरों के जो हम पे ऋण हैं वो नहीं चुकाया जा सकता है, अगर सात जन्म भी लें तब भी नहीं चुकाया जा सकता है। बहुत अच्छा आपने जो बताया है। बढ़ते हैं आगे कि पितरों के समान और क्या क्या चीजें हैं। तो तीन वृक्ष, तीन पक्षी, तीन पशु और तीन जलचर। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का पितृलोक चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। धर्मलोक के अनुसार माना गया है। और दूसरी ओर अग्निहोत्र कर्म से आकाशमंडल के समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं। पक्षियों के लोक को भी पितृलोक कहा जाता है। तो जहाँ पे पक्षी उड़ते हैं वो लोग उस लोक को पितृलोक कहते हैं। तीसरी ओर कुछ पितर हमारे वरुण देव का आश्रय लेते हैं।
2: राजेंद्र जी, जैसे कि आपने कह रहे हैं कि पक्षी,
0: हाँ,
2: तो खास करके मैं कुछ फिल्मों में देखे हैं और व्हाट्सएप बरेख पे भी भेजा जाता है कि कोई प्रकार के पक्षी भी होता है जिसे, और ये पितृ पक्ष यानी कि पर्व श्राद्ध में उसे कुछ खाने पीने के दिया जाता है।
0: कौवा, कौवा,
2: वो कौवा होता है, तो उससे,
0: हाँ, कौवा की बात अभी हम आगे आने वाली है,
2: आने वाले।
0: अतः पितरों की स्थिति जल में भी बताई गई है। वरुण देव जल के देवता हैं और पितरों की स्थिति जल में भी बताई गई है। तीन वृक्ष की सबसे पहले बात करेंगे। पीपल का जो वृक्ष है, पीपल का वृक्ष बहुत पवित्र है। एक ओर इसमें जहाँ विष्णु का निवास है वहीं यह वृक्ष रूप में पितृदेव हैं। पितृपक्ष में इसकी उपासना करना या इसे लगाना विशेष शुभ होता है। और दूसरा नंबर है बरगद का वृक्ष। आगे का संदेश बरगद का वृक्ष है। बरगद के वृक्ष में साक्षात शिव निवास करते हैं। अगर ऐसा लगता है कि पितरों की मुक्ति नहीं हुई है तो बरगद के नीचे बैठकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और जो तीसरा वृक्ष है वो है बेल का वृक्ष। बेल आप जानते हैं?
1: बेल वृक्ष, बेल का पत्र
2: जो शिव जी पे चढ़ाया
1: जाता है, शिव जी पे चढ़ाया जाता है,
2: बेल पत्र
1: पे चढ़ाया जाए।
0: बेल पत्र होता है पत्ता और बेल पत्थर होता है फल।
2: फल,
0: हाँ, उसको पत्थर, वो पत्थर जैसा मजबूत
2: बड़े बड़े।
1: राजेंद्र जी, हम लोग बात कर रहे हैं बेल ब्रादरे के।
0: बेल ब्रादरे, यदि पितृ पक्ष में शिव जी को अत्यंत प्रिय बेल का वृक्ष लगाया जाए तो अतृप्त आत्मा को शांति मिलती है। जिसकी आत्मा को शांति न मिले वो बेल के वृक्ष लगाने से मिल जाती है। अमावस्या के दिन शिव जी को बेल पत्र और गंगा जल अर्पित करने से सभी पितरों को मुक्ति मिल जाती
3: है। अगर सोने, अगर जैसे आपने कहा राजेंद्र जी कि अमावस्या के रोज अगर पितर पक्ष जो में अगर आपको मौका नहीं मिला करने के लिए कि कोई हालत जैसे हो, तो अमावस्या के रोज आप कर सकते हैं जी।
0: और इसके अलावा अशोक, तुलसी, समी और केले के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए।
1: हाँ जी, केले में तो साक्षात विष्णु भगवान निवास करते हैं।
0: हाँ, केले का वृक्ष भगवान विष्णु का ही है।
2: आगे चलते हैं राजेंद्र जी, क्योंकि संदेश ज्योति का प्रकाश में यही लक्ष्य रखा जाता है कि कुछ ना कुछ संदेश हम सबको प्राप्त हुए। जैसे कि पता है कि शांता जी भी कुछ सुंदर सुंदर गीतों को लेकर भी आए हैं, तो देखते हैं राजेंद्र जी क्यों ना एक गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर हाँ। आगे हम सब कार्यक्रम बढ़ाने वाले हैं।
0: जरूर, जरूर।

0: राजेंद्र जी, कहा जाता है कि ईश्वर दुनिया के सबसे बड़ा और डॉक्टर है। प्रार्थना दुनिया के सबसे बड़ी दवा है। तो आगे का कार्यक्रम में आप क्या सुनाने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर और दवा के बारे में तो हमें जानकारी मिल गया है, पर ये आज का विषय जो रखा गया है, ये श्राद्ध अंतर्गत कौन सा संदेश, क्योंकि शांता जी भी तैयार हो गया है नीदरलैंड्स में कुछ हम सबको सुनाने के लिए। और कार्यक्रम में जो अब हमारे कैसे कहा गया था,
1: मिस सेंड्रा
0: भी है, और मिस सेंड्रा से आग्रह करूंगा कि आप क्या लेकर आए हैं, आगे सुनाइए।
2: हाँ जी, मेरे पास भी दो लाइनें बची हुई है कविता के। हर दिन हर पल आपसे मांगे ये वरदान, वंश भले बताते रहे बढ़े मान सम्मान। ये पितरों से होता है। घर पिंडे में आप विराजे यही अरज करे, कहत भक्त हम शरण आपके निस दिन महर करे, ओम पित्र पितरायने नमो नमः।
0: तो राजेंद्र जी, सांद्रा जी काफी चतुर है और सामान लेकर आए हैं जिसे हम सबको, और काफी जानकारी छोड़ दी है हम सबके लिए।
1: हाँ, सांद्रा जी तो तैयारी करके सुरनाम जाती रहती है और पितृपक्ष के बारे में पढ़ती रहती है, तो उनको तो ज्ञान ही है।
0: ऐसा बहुत बढ़िया बात है सांद्रा जी, जो आपने भी संदेश दिए। ये पर्व श्राद्ध अंतर्गत जो पितृपक्ष से हम सब जानते हैं, इसमें कौन सा जानकारी अभी और राजेंद्र जी रखने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपसे अभी से कह देता हूँ कि शांता जी भी कुछ तैयारी करके लेकर आए हैं, और ना सिर्फ शांता जी के पिटारा में सुंदर सुंदर गीतों हम सब के लिए रहते हैं, पर शांता जी कुछ नई दलांस में लेकर के हम सब के लिए आए हैं। पर राजेंद्र जी, सब कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट, पर क्यों ना आप आज कुछ संदेश और सुना देते हैं, तो फिर हम सब शांता जी की ओर बढ़े।
1: हाँ, जरूर। आगे के जो संदेश है कौवा के बारे में, कौवा को, कौवा यानी कागा
2: शनि देव के वाहन।
1: कौवे को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रय स्थल माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवा का बहुत महत्व माना गया है। इस पक्ष में कौवा को भोजन कराना अर्थात अपने पितरों को भोजन कराना माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी क्षमतावान आत्मा कौवे के शरीर में स्थिर होकर विचरण कर सकती है।
0: तो राजेंद्र जी, कौवा के बारे में कुछ और हम सबको जरूर बताइए, पर हम लोग को, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर है और फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के, हम सबके जरूर समय दिए हैं कार्यक्रम करने को, पर हम लोग के कुछ परप्लेक्सिंग होते हैं और हम सब न्यूज़ की ओर पहले बढ़ते हैं। और न्यूज़
1: से जब कौवा की बात चली गई, तो एक मिनट की बात और रह गई है। जब कोरोना का समय आया तो कौवों ने एक मीटिंग करी सबने।
0: हाँ जी।
1: श्राद्ध पक्ष को देखते हुए कौवों की आपात मीटिंग बैठी। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिस घर में बूढ़े माता पिता के साथ बुरा व्यवहार होता है, उस घर के अन्न जल का बहिष्कार किया जाएगा। जो जीते जी अपने माता पिता को पाल न सके, वे मरे हुए लोगों को पितृपक्ष पितृभोग लगाने की कोशिश के काबिल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कौवों ने कैसी मीटिंग करी है, ये देखो। और लास्ट ईयर जब कोरोना के समय कौवों ने एक मीटिंग और करी थी कि भाई इस बार कौन कैसा रहेगा, क्योंकि कोरोना का समय है, इकट्ठे नहीं जाएंगे, अलग अलग सब लोग जाएंगे, तो उनकी ड्यूटी अलग अलग लगी थी कौवों की। तो संदेश हमने पिछली बार देखा था, बड़ा बढ़िया संदेश था वो भी। इस प्रकार से कौवों की बात चली थी, तो क्यों ना आगे अब न्यूज की ओर बढ़ा जाए और इसके बाद सारा जो वृतांत रखा जाए उसकी बात करेंगे।

तौबा मेरी तौबा, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठा लो। मूवी सिकंदर निकंदन अख्तन सस्तका, जो इसका जो म्यूजिक बजाया गया है शंकर जय किशन और हसरत जयपुरी का, जो हाथ है कलम जो से लिखा गया है वो हसरत जयपुरी है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रोग्राम को अगले गानों को मैंने चुन पे रख चुका हूँ, दम मारो दम। चलो हरे रामा हरे कृष्णा जीना तमन, जीना तमन ने काम किया है देव अनंत जीना तमन और आशा भोसले की आवाज से दोस्तों। और देखा जाए ये भी आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है और म्यूजिक सजाया है एरदे बिरमन। चलो मिलके सुनते हैं एवर ग्रीन लव फ्रॉम हिंदुस्तानी रेडियो से।

दोस्तों दमरुदम अभी आप सुने थे दमरुदम और हम आपको ले जाते ही इस वक्त रंबा हो शंबा हो चलो हम सब सुनते हैं मूवी अरमान और हम मिलके इसे सुनेंगे दोस्तों चलो देखते हैं प्रोग्राम में क्या क्या नहीं है।

जी हाँ, रंबा हो शंबा हो मूवी अरमान उषा उत्तम पप्पी लहरी और इंदिवार आप सुन रहे थे दोस्तों। चलो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ याद आ रहा है, देखा जाए तो पप्पी लहरी का ये डांस नंबर है याद आ रहा है। पप्पी लहरी है डिस्को डांसर का ये जो गाना है और लाइरिक्स से अनजान जो इस हाथ चलाया है और म्यूजिक पप्पी लहरी का है। चलो हम आप लोग को सुनाते ही डिस्को डांसर और मिथुन चक्रवर्ती ने इसमें काम किया है।

जी हाँ दोस्तों, हो जाए तो बल्ले बल्ले दिलर मेहंदी का आवाज अभी आप सुन रहे थे। हम चलेंगे बोले तारा रा रा रा रा रा रा। चलो सुन के देखे, देखते ही मिलके हम आप लोगों को सुनाते हैं। देखा जाए तो बोले तारा रा रा रा रा भी मैंने गाने को देखा है और यहाँ है वो गाना, हम आपको सुनाते हैं बोले तारा रा रा रा। क्या हुआ यार, देखा जाए तो कुछ गड़बड़ हो चुका है इसमें, देखा जाए इसमें तो है कुछ और। हम इस गाने को रखते हैं, थोड़ा से कुछ गड़बड़ हो चुका है इसमें।

जी हाँ दोस्तों, जाने जा ओ मेरी जाने जा इर्ष दे बिरमन। जी हाँ दोस्तों, चलो हम घड़े की तरफ देखते ही तो क्वार्ट फोर फिर है, इसका मतलब है हम दो गाने और चलाएंगे, उसके बाद न्यूज बयाम चलेंगे और हमारा कोलेगा, मैं नहीं जानता हूँ कौन सा कोलेगा, लेकिन एक ऐसा कोलेगा फिर से ले लेगा। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं पढ़ते हैं आगे और बोलो तारा रा रा दिलर मेहंदी, पंजाबी गाना है दोस्तों।

जय दोस्तों, हर एक को हम यहाँ से राम राम कहते ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुह हो और खुदा हाफिज हो। हर एक को जुम्मा मुबारक हो। हर एक जो हमारा साथ दिया है हम उनको राम राम नमस्कार कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम को सुने हैं, पसंद भी करे हैं। काफ़ी लोग हैं जिसका फरमाइश से मैं दिन तक के ज़रूर सुनाऊँगा। यहाँ से हम बहुत विदाई लेंगे। दिन तक के मंगलवार को हम आपके साथ ज़रूर रहेंगे। यहाँ से हम न्यूज़ रखते हैं, कुछ बयान है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम द्वारका ले लेगा राजन द्वारका हमारा कुलेखा जो प्रोग्राम को आगे ले जाएंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए जाने के लिए। राम राम नमस्कार और खुदा हाफिज़ हो। खुदा हाफिज़ हो।

चिरैया दैया बोले और कोना रंगा मुनुआ के साथ आपको ले गए, मैं बन गई हाय मिनुआ तोरे दीवाना। रेडियो फाउन ये पहला स्टेशन है ये सब गीत जो रिलीज

जरूर से बुला देना अपना भौजी को। और ननदियन तो आप तो जानते हैं भौजी ना, ये बहुत चंचल होती है, कब किस वक्त आपके द्वारे पे आ जाए बधौवा लेके खुश खबर लेके। आपको पता नहीं, बस भौजी जी आप तैयार रहना ननदियन को स्वागत करने के लिए।

आए बाराती मेहमान, आपसे बता दे सिर्फ सात फ्राइडा सात डाक के विवाह नहीं होता है, पर पूरे हफ्ता पूरा सप्ताह विवाह होता है, क्योंकि ये मुहूर्त कब किस वक्त में है ये आप विचार कर और देख सकते हो।

हमने देखे है स्टाथहुस में या स्टाथहुस में नीदरलैंड में मैंने देखी है कि हर एक आधा घंटा पे विवाह होता है। फॉल खबूक द हेलवेक दौर हाफ यूर चक राइट मैन अंग वन ऑफ हु फेल टाइट यू खरे सर फिर टैप एंड अंदर हंदार फन वर्दन वे द स्टाथहुस है पे खसीन द हेल ताह दौर हां एक पार दी कोमेंट रासा खान से कोमे एक सो फ्रोलक एंड wensen wij ook vanuit Faan Hindustani Radio dat hun huwelijk leven ook zo gezellig, rooskleurig door mag gaan.

हिंदुस्तानी रेडियो गीत के अनुसार तो बदहुआ भी आ गए हैं, शादी हो गए हैं, बाराती भी आ गए हैं और बच्चा भी हो गए हैं और यहाँ से पप्पा के लिए भी एक सुंदर सा गीत है।

हाँ पापा जैसा कोई नहीं। हाँ क्योंकि पापा पापा होता है, मामा मामा होता है, और दोनों का प्यार बहुत बहुत जरूरी है एक बच्चा के लिए।

बरसन न लागे मोरे पिया की पिया बिना आए मोरे निंदिया। मेरे प्यारे सुनने वालों, आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द एनख एख्त।

in love, you are in love, he is and she is also in love. प्यार से ये सृष्टि से रचाई गई है मेरे प्यारे सुनने वालों, तो हम और आपसे क्या कहे। लता और किशोर दा जी के आवाज में यहाँ से आपने और मैं भी सुने हैं। आपको ये बताना चाहती हूँ, और वो क्या है जरा हम यहाँ से आपके बता दें। झूठे प्यार को पहचाने, झूठे प्यार को पहचाने, सच्चा प्यार भी होता है। पर कहीं यहां से हम आपको इतला करते हैं कि झूठे प्यार को भी आप जरूर से पहचाने। तो पहला ये है जो आपको सबसे बात में याद करे, जो आपको सबसे बात में याद करे, वो सच्चा प्यार नहीं कर सकते। जो प्रायोरिटी आपको नहीं देते, उसके मतलब है वो सच्चा प्यार आपसे नहीं करते। जहाँ पर एक दूसरे को समय ना दिया जाए, एक दूसरे को समय ना दिया जाए, वहाँ सच्चा प्यार नहीं हो सकते। और जो आपको गलत काम के लिए जोर दे, जो आपको गलत काम करने के लिए जोर दे, वो सच्चा प्यार नहीं हो सकते। और एक ये भी है, जो अपने परिवार को छोड़कर आपके पास आए हैं, वो आपको छोड़कर भी जा सकते हैं, ये भी सच्चा प्यार नहीं है। के जीवन में ऐसे ऐसे घड़ी जो आते हैं, तो आप जरूर से इस पर गौर करें।

ये सुंदर सा गीत आपके लिए चला दिया गया है। गीत का बोल आई एम इन लव, सोनू निगम, महालक्ष्मी आयर।

प्यार प्यार ना ही सिर्फ अपने पति या पत्नी से किया जाता है, बच्चों से भी, परिवार से भी, माँ बाप से भी, पड़ोसी से भी, भाई बहन से भी। एक बार कभी मैंने कहा था कि अगर ये सब नहीं रहेगा, भाई बहन, बच्चे, माँ बाप, तो इनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है, कोई कोई भी नहीं। लोग कहेगा मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, पर माँ नहीं, मैं तुम्हारे पिता जैसी हूँ। जैसी ये शब्द, माँ माँ होती है, पिता पिता होता है, अपना बच्चा होता है, पति पत्नी अपने होते हैं। आप दूसरा स्त्री के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, दूसरा पुरुष के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, पर वो जो आपके साथ रह चुके हैं, जिसके साथ आपके गांठ बंधन हुए हैं, वो सिर्फ एक बार ही होता है। इस बात पर ये कहना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप के साथ बैठो, अपने माँ बाप के साथ बैठो, उनसे बात करो, एक दिन वो खुद ब खुद खामोश हो जाएंगे। उन्हें आज़ाद छोड़ दो, अपने माँ बाप को आज़ाद छोड़ दो, खर्च करने दो, अपनी मर्जी से जीने दो, एक दिन वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ जाएंगे। उन्हें बार बार ना टोको, जब वो खामोश हो जाएंगे तुम उनकी आवाज सुनने को तरस जाओगे। जितना हो सके, जितना आपसे हो सके, उनका आशीर्वाद लो। जितना आपसे हो सके अपने माता पिता का, अपने बुजुर्ग का आशीर्वाद लो, उनकी सेवा करो, और जीते जी अपनी गलती के, जीते जी अपने गलती के लिए उनसे माफी मांगो। जब वो चले जाएंगी, फिर तुम्हारे माफी मांगने का कोई कोई कोई फायदा नहीं होगा। उनके पास बैठो, उनके साथ खाना खाओ, एक दिन ऐसा भी आएगा वो चले जाएंगे, और तुम थाली में भोजन लेकर जब बैठोगे तो उनको, तो आप उनको याद करके रो लोगे, तो आप उनको याद करके रोने लगेंगे।

किशोर दास से। किशोर दास जी से हमने सुने कि मैं आशिक हूँ बहार का टाइटल सॉन्ग आपके लिए चला दिया गया है। फाहम रेडियो से आप और मैं जुड़े हैं।

इश्क हुआ आजा नचले फिल्म का नाम। सोनू निगम और श्रिया घोषाल जी की आवाज में इश्क हुआ। शब्द शब्द यानी कि बोली बोली जो आप और हम सुनते हैं ना, शब्द से खुशी मिलते हैं, शब्द से गम मिलते हैं, शब्द से पीड़ा भी मिलते हैं। ऐसे कोई कड़वा शब्द आपको कह दे तो आप जरूर घायल हो सकते हैं। शब्द ही मरहम है, शब्द ही मरहम है। आपसे कोई दो मीठे बोल दे तो आप जरूर से जो गम है वो भूल सकते हैं, पर जो गम आपको है वो कितने गहरा है ये मुझे पता नहीं, फिर भी शब्द ही मरहम होता है।

0: राजमहल
1: लाल पत्थर का ताज।
0: ताज ही है, किसने लाल पोत दिया है?
1: इस इमारत का नाम बताओगे या मैं जाऊं?
2: हुमायूं का मकबरा। इतने पैसे नहीं थे कि तुम्हें आगरे ले जाके ताज दिखाऊं। सॉरी।
1: आज से हुमायूं का मकबरा ही मेरे लिए ताजमहल है। हमारी मोहब्बत जितना खूबसूरत,

0: गुरुद्वारे में दाखिल होने से पहले सर ढक लेते हैं।
1: दरगाह में भी
0: मत्था टेकने से पहले हाथ मुंह धोते हैं,
1: सजदा करने से पहले भी।
0: दरगाह में कड़ा प्रसाद नहीं मिलता,
1: तबर्रुक मिलता है। मेरी इबादत

0: ताज।
1: हुमायूं का मकबरा।
0: हमारी मोहब्बत
2: राहत फतेह अली खान और महालक्ष्मी आयर जी के आवास में आपने सुने बोलना हल्के हल्के। सुनी हुई बातों पर भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। जी हाँ ऐ मेरे दोस्त, कि सुनी हुई बात पर भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी का वो भाग कभी नहीं सुनाएगा जहाँ वह स्वयं गलत था।

खुद के बारे में, खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो, बस कुछ देर आंख बंद करके, कुछ देर आंख बंद कर अपने ज़मीर से ज़रूर से पूछें।

प्रेम में पुरुष कभी पुरुष हुआ ही नहीं, प्रेम में पुरुष कभी पुरुष हुआ ही नहीं, वो स्त्री के छाती से चिपक कर एक छोटा बच्चा बन जाता है। और प्रेम में पड़ी स्त्री माँ के समान हो जाती है। आप सुन रहे हैं फावन हिंदुस्तानी रेडियो।

जो लिया तुमने जो लिया यहाँ से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो आज तुम्हारा है, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन परिवर्तन।

येशुदास जी की आवाज में, येशुदास जी की आवाज में फिल्म का नाम एक बार कहो, फिल्म का नाम एक बार कहो। नेखन तीन तख्त में ये पिक्चराइज किया गया।

और मुस्कान जाने के अन खलिमलाख। इसमें फर्क क्या है? व्हाट इज दैट फर्शकिल? मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए, दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार है। मौन से यहाँ कई मुसीबतों को पास आने से रोका जा सकता है। मौन से यहाँ कई मुसीबतों को पास आने से रोका जा सकता है। तो मुस्कान से, एक मीठी मुस्कान से एक मीठी मुस्कान से

0: तो क्या है
1: ये दुनिया अगर मिल जाए तो आप ही बताओ आपको क्या चाहिए। फिल्म प्यासा से ये सुंदर सा गीत रफी जी की आवाज में। पत्थर की है दुनिया, पत्थर की है दुनिया, जज्बात नहीं समझती। पत्थर की है दुनिया, जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है, दिल में क्या है वो बात नहीं समझती। तन्हा तन्हा तो

जिंदगी क्या है, रफी साहब की आवाज में दिल दिल को टटोल देते हैं ये सुंदर सुंदर गीत। माय गॉड, इंसानियत इंसानियत इंसान को इंसान बना देता है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देता है।

ज़िंदगी से ये सवाल किया जाता है कि ये बता दे मुझे ज़िंदगी, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह जी की आवाज़ में। इंसानियत इंसान को इंसान बना देता है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देता है। लगन लगन हर मुश्किल को आसान बना देता है। लगन यानी कि है दून है प्रोबेर। लगन हर इंसान को हर इंसानियत इंसान को इंसान बना देता है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देता है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने।

आशा भोसले जी के। जी हाँ, आशा भोसले जी के आवार्त में ये दर्द भरा गीत आपके लिए पेश किया गया। फूल और पत्थर फिल्म का नाम। मेरी प्रार्थना को ऐसे स्वीकार करो मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना को ऐसे स्वीकार करो मेरे प्रभु, कि जब जब सर झुके मुझसे जुड़े हर इंसान, मुझसे जुड़े हर इंसान की जिंदगी संवर जाए।

0: मीठा बोलना, मीठा बोलने और सभी को इज्जत करने के लिए।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales.

माइटी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए, ये शानदार गीत हमने पेश की हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। हमने प्लेयर में तीन गाने रखे हैं, जी हाँ तीन गाने, चार गाने रखे हैं। अब सोचता आया, सोचता ये हूँ कहाँ शुरू करूँ, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। रफ़ी साहब की आवाज़ में गीत आप सुनिए, फिल्म दो बदन में से है।

नैनों में बदरा छाए, ये गीत हमने निकाले हैं मदन मोहन के साज पर मेरा साया में से, और हमने पेश की हो फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। एक गीत हमने और प्लेयर में रखे हैं, ये सुबह के लाली के जिक्र कर रहा है। अब ये मुझे पता नहीं है कि सुबह ये गीत चलाना चाहिए या शाम को या दोपहर को या रात को, ये पता नहीं है, क्योंकि ये गीत मेरे दिमाग से निकल गया। इसका धुन कैसे है, बात कैसी है, आशा जी एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुना रहे हैं। फिल्म है अभी तो ये अभी तो जीले में से निकाल रहे हैं निकती सीफ न सीफ तक। चलो सुनते हैं, चलो एक बार मैं भी बेवक्त के शहनाई बजा दूँ।

तू लाली है सवेरे वाली, फिल्म है अभी तो जी ले, नेगती सैफ न सैफन तक, आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए। दरअसल में ये गीत हमने पहली बार चलाया, पता नहीं धुप्पल में कैसे मिल गया। इसका म्यूजिक डायरेक्टर है जगमोहन बख्शी और सपन सेन गुप्ता। मुझे इस फिल्म के बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब जब हमने सुन लिए, देख लिए और जान लिए, तब ढूंढेंगे ये फिल्म कि कैसा फिल्म है ये। अभी तो जी लेने नेगती सैफन सैफन तक, ये गीत हम आपको सुनाए ओ फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

देसी में प्यार की आबरू मदन मोहन के साज पर लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाए। मैं भी एक गीत बैठ के बहुत दिनों बाद सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा। इतने खो गए थे इस गीत में कि हमने भूल गए ये गीत भी चून करने को कि ये गीत कैसा है। चलिए हम आपको सुनाते हैं, मुझे भी नहीं पता कैसा गीत है।

गा दीवाने झूम के मैत मुकेश की आवाज में आपको सुनाया गया ये गीत। तो चलिए ये बदली हुई गीत हम रखते हैं। हाँ

ये कश्मीर है, ये शानदार गीत आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है।

सदियों पुरानी अपनी कहानी और रवि साहब और आशा जी आपको सुनाए रवि के साथ पर फिल्म शहनाई में से निकालकर हम ये गीत पेश किए। चलिए अगर नंबर प्लेयर में ये गीत रखे हैं, इस तरह से सुनते हैं।

दिल से दिल की डोर बांधे ये शानदार गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। इस तरह से आ रहा है आपकी मांगी हुई गीत।

रफ़ी साहब का ये गीत है चांद की अंगड़ाई। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से।

मैं आशिक हूँ बहारों का, मैत मुकेश मुकेश जी आपको सुनाए ये शानदार गीत, जबकि आप भी हैं, आप सुन रहे हैं। और मैं दनाख में स्टूडियो में बैठकर चला रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए ये गीत। लता जी और सुबीर सेन के गाना बहुत कम चलता है। अपने हुए पराये में से निकली फिर सस्त लता जी और सुबीर सेन जी।

लता जी और सुबीर सेन मिलकर ये दोनों ये द्वैत आपको सुनाए हैं। फिल्म अपने हुए पराये में से निकाल कर हमने चलाए हैं निगती फिर शस्त्र का ये गीत है शंकर जय किशन के साज पर। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं कि प्यार में क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ तक कि डफली वाला भी बन जाते हैं लोग।

डफली वाले डफली बजा, ये गीत सुनाया गया। हमने पेश की ओफर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और से आ रहा है। हाँ, इस तरह से है।

फिल्म भीगी रात में से निकाले हैं निकिती फैफ इन सस्तिक के ये गीत है रोशन के साथ पर रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में हमने पेश किए। चलिए अगला गीत चलाने वाले हैं, जी हाँ, और वो है मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। क्या ख्याल है

मुझसे भी खफा रहना, माइक मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं। चलिए ये गीत तो सुनाए बिना हम आपको नहीं जाएंगे।

महेंद्र कपूर जी और लता जी मिल के आपको सुनाए हैं। ये प्यारा गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म घर बसा के देखो में से हमने निकाल कर ये चलाए हैं।

गा दीवाने झूम के मैत मुकेश की आवाज में आपको सुनाया गया ये गीत। तो चलिए ये बदली हुई गीत हम रखते हैं। हाँ

कश्मीर है, ये शानदार गीत आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है।

सदियों पुरानी अपनी कहानी और रफ़ी साहब और आयशा जी आपको सुनाए रवि के साथ पर फिल्म शहनाई में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए। चलिए अगर नंबर प्लेयर में ये गीत रखें, इस तरह से सुनते हैं।

दिल से दिल की डोर बांधे ये शानदार गीत चला ऑफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। इस तरह से आ रहा है आपकी मांगी हुई गीत।

रफ़ी साहब का ये गीत है चांद की अंगड़ाई। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से।

मैं आशिक हूँ बहारों का मैं तो मुकेश, मुकेश जी आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, जबकि आप भी हैं, आप सुन रहे हैं और मैं दनाख मिस्त्री में बैठकर चला रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए ये गीत लता जी और सुबीर सेन। सुबीर सेन के गाना बहुत कम चलता है। अपने हुए पराये में से निकली फिर सस्त लता जी और सुबीर सेन जी।

लता जी और सुबीर सेन, सुबीर सेन मिलकर ये दोनों ये दुएत आपको सुनाए हैं। फिल्म अपने हुए पराए में से निकाल कर हमने चलाए हैं निकती फिर सस्त का ये गीत है शंकर जय किशन के साज पर। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं कि प्यार में क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ तक कि डफली वाला भी बन जाते हैं लोग।

मुद्दे इलाक बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर एक खुदा होता है। सुनने वालों के हिम्मत में आदाब अर्ज नमस्कार। आज जबकि मंगलवार है, अक्टूबर की 6 तारीख, जो बीमार है, लाचार है, खास करके हॉस्पिटल के अंदर है, तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं। जिनके घर में शादी या सालगिरह है, फाओ रेडियो के फूल टीम की तरफ से मुबारकबाद और बधाई पेश हो। जो लोग इस वक्त सफर पर जा रहे हैं, सफर मुबारक हो। जो लोग इस वक्त गैर मुल्क से यहाँ नीदरलैंड में आए हैं, उसको मैं खैर मकदम कहती हूँ। हो सकता है कि किसी के घर पर कोई दुख की घड़ी आन पड़ा, तो यकीनन हम आप सबके गमी में शरीक है। आज के प्रोग्राम में आप क्या इंतजार कर सकते हैं? इश्तिहारे, कुछ मिले जुले नगमे, नए और पुराने नगमे, सब मिला जुला कर कोशिश करूंगी 3 बजे तक आपकी खिदमत करने को। खिदमत करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हाजिर है खुद मैं, बीबी सहबा रहीम बख्श। 3 बजे तक प्रोग्राम को सुनते रहना। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से हम प्रोग्राम को पेश करेंगे, आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए मेरे हिस्से का प्रोग्राम के ओपनिंग सिलेक्शन आप सुनेंगे।

सुराही कार गर्दन कोयल सी है आवाज। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफी से गीत सुन रहे थे मेरे हिस्से का प्रोग्राम के ओपनिंग सेलेक्शन।

और बेशक दिल बहलता है आपके आ जाने से। अभी आपने मोहम्मद अजीज और साथ में साधना सरगम से गीत को सुन रहे थे।

हसीन हसीन वादियों भी अपने अनवर हुसैन से गीत को सुन रहे थे। इसमें देखा जाए तो 2 मिनट बाकी 1:30 बजने में आप फाहों रेडियो पे चुने, हमारा पता है न्यूटन, माफ कीजिए, Johan Winkelskade nummer 351. Tarka nummer 3652247. Rekam ke liye.

रब तेरा मैं शुक्र मनाऊं कि मुझे मेरा यार मिल गया। अभी आपने लता मंगेशकर, उदित नारायण और विनोद राठौर से गीत सुन रहे थे, संगीतकार राम लक्ष्मण। चांद सितारों के रोशनी, चांद सितारों के रोशनी हमेशा जगमगाते रहे, छोटी सी दुनिया में खुशियों भरी फूल बरसाते रहो। और जो गीत हम पेश करने को जा रहे हैं, खास करके बारन दरख्त के रहने वाली बीबी साहिबा राफिया रहीम बख्श, जो इस वक्त इंटरनेट के द्वारा रेडियो फाहन का प्रोग्राम सुन रहे थे, चलिए आपके नाम पर मैं ये गीत को पेश करती हूँ।

मोहब्बत रंग लाती है आहिस्ता आहिस्ता। अभी आपने अनवर हुसैन और साथियों से गीत सुन रहे थे और गीत खास करके पेश था बरंद्रह के रहने वाली बी साहिबा राफिया रहीम बख्श, जो इस वक्त इंटरनेट के द्वारा फावन के प्रोग्राम सुन रहे थे।

मोहब्बतों का सफर है हमारे साथ चलो बेशक। अभी आपने पंकज उदास कविता कृष्णमूर्ति से गीत सुन रहे थे। इसमें देखा जाए तो 9 मिनट बाकी है 2 बजने में।

सुल्तान अरे प्यार का मौसम आया। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर से गीत को सुन रहे थे रेडियो फाहुन के शाम के प्रोग्राम में। बड़े मुश्किल से मैंने पाया, बड़े मुश्किल से मैंने पाया मेरे चांद जैसी दुल्हन, सपनों में हजार बार आए मेरे घर पे पहली बार आए।

पहल तूने दिया और दिल मैंने लिया, अगर दुनिया जले तो हम क्या करें। अभी आपने मुकेश और साथ में गीता गर्ग से गीत को सुन रहे थे। अगला गीत की तरफ हम आप सबको लेकर चलती हूँ।

0: कमाते कमाते उम्र गुजर गई। अभी आपने गीत को सुना रेडियो फाहुन के मंगलवार की शाम के प्रोग्राम में। इसमें देखा जाए तो 2:20 व्यतीत हो चुका है। हमारा और आपका मिलन सिर्फ 3 बजे तक है। 3 बजे के बाद रेडियो फाहुन के अनुसर साथी के जरिए से बाकी के प्रोग्राम आप सुनेंगे।
1: ना कहीं छाई बदरिया, फिर भी मोरे जियारा में चमके, अरे थम थम कोई बिजुरिया।
2: वाह वाह वाह, तोहार जवाब नहीं,

0: बिना बद्रा के बिजुरिया कैसे चमके। अभी आपने मुकेश और साथियों से गीत को सुन रहे थे।
1: शिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

तुम सबसे हंसी हो और सबसे जवान हो, आज मेरी नजर में आई हो। अभी आपने महेंद्र कपूर और आशा भोसले से गीत को सुन रहे थे।

एक हजरत थे कि आंचल का मुझे प्यार मिला, भी आपने मुकेश से गीत सुन रहे थे। एक गम और कितनी दीवारें, एक गम और कितनी दीवारें, एक फूल और कितनी कांटे, एक राही और कितनी मंजिलें, एक दिल और कितनी अरमाने, एक जिंदगी और कितनी घटाएं।

कोई कह दे जमाने से जाके कि हम घबरा के मोहब्बत कर बैठे। अभी आपने आशा भोसले से गीत को सुना। संगीतकार ओपी नैयर, इस गीत का लेखक है अजीज कश्मीरी।

ये उल्फत का जमाने का न पहरा होता तो कितना अच्छा होता। अभी आपने लता मंगेशकर और मुकेश से गीत को सुना, 10 मिनट बाकी है 3 बजने में। हमारा और आपका मिलन सिर्फ 3 बजे तक है, 3 बजे से के बाद रेडियो फागुन के अनाउंसर साथ ही प्रोग्राम को ऑफर लेगा।

डफली वाले डफली बजा, ये गीत सुनाया गया। हमने पेश की ओफर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और ऐसे आ रहा है, हाँ इस तरह से है।

फिल्म भीगी रात में से निकाले हैं निकिती फैफिन सस्तिक के ये गीत है रोशन के साथ पर रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में हमने पेश किए। चलिए अगला गीत चलाने वाले हैं, जी हाँ, और वो है मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। क्या ख्याल है

अभी हम मुझसे भी खफा रहना, माइक टू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं। चलिए ये गीत तो सुनाए बिना हम आपको नहीं जाएंगे।

महेंद्र कपूर जी और लता जी मिल के आपको सुनाए हैं। ये प्यारा गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म घर बसा के देखो में से हमने निकाल कर ये चलाए हैं।

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9753523 तक सेफ न फेटा। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

उनमें पल दो पल का शायर रे शायर और शायर हूँ। तो ये गीत को है सलमा और सबीना का तौबा तौबा मामा मिया।

और तौबा तौबा चक्कर में न आना और बुरा है जमाना, सलमा और सबीना का ये सॉन्ग है। तो ये गीत कौन है दोस्तों, ये भी एक यूपी पोल पद्मश्री मोहम्मद रफी का एक हिट सॉन्ग है जो यहां से हम आपको सुनाते हैं। तू इस तरह से मेरे जिंदगी में और आना, कौन इस तरह से आना, ये गीत आपको बताते हैं।

आए जानी चमने और तेरा गोरा गोरा बनन में क्या हलचल मच चुका है। ओहो आशा जी रोमांटिक सॉन्ग वक्त सॉन्ग के नाम है जब हम जब जमीन पर वो फिक्र नाम है वक्त नहीं खतीन 165 का।

हम जब सिमट के आप और बाहों में आ गए, और वो है महेंद्र कपूर का ये जोंग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला जोंग के लिए। तो ये क्या है दोस्तों, हम सफर मेरी हम सफर, और वो नाइटिगेल नाइटिगेल, और वो है लता जी का ये सॉन्ग है।

हम सफरी मेरी हम सफरी और ये बहुत बेमिसाल जोन है हमारी यारो हमारी दोस्तों। तो अगला गीत के ओर हम चलते हैं। न्यू निवर्रे तुम्हारी नजरी क्यों खफा हो गई और गुस्सा मत कीजिए पदमा श्री मोहम्मद रफी और नाइकी ये लता जी का मूवी का नाम है दो कलियां।

तुम्हारी नजरें अरे क्यों खफा हो गई हैं और खता बस्त दो। दोस्तों ये एक मस्त भरी सॉन्ग जो आपको हम सुनाने जा रहा है हेमंत दादा का, ये सॉन्ग है।

0: जो आपको हमने सुना ही दिया है यारो।
1: कवि न बन,
0: अगर कविता किसी हो तो ध्यान से सुनिए।

आपके प्यार में कभी कोई कवि ना बन जाएंगे। तो हम और एक चलते हैं, जीवन भर ढूंढा जिसको, वो प्यार अभी तक नहीं मिला है।

और जीवन भरे ढूंढा जिसको वो प्यार तो नहीं मिला हमारे यारो। तो यहां पर हम चलते हैं किशोर दादा के ओर, और किशोर दादा आपको क्या सुनाते।

और दोस्तों देवानंद का ये फिल्म है जो आप लोग को देखना चाहिए, इट इज हील मूवी फिल्म है। तो हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर। ये भी एक सॉन्ग है जो चोरी चोरी जो तुमसे मिली, नाइटिंगेल लता मंगेशकर और करोड़ों का दिल चुराने वाला द हार्ट ऑफ मिलियंस माइती मुकेश का ये सॉन्ग।

और तुमसे हो हसीना कभी तो मोहब्बत तो मैंने करनी थी। परमा श्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है, मूवी का नाम है फर्श नहीं खती हूँ, उसी वलन शस्त्र के सॉन्ग थे। उसके बाद हम चलते हैं आशा जी की और आशा जी मूवी का नाम है पूजा का फूल और आशा भोसले का ये सॉन्ग है।

0: और बंदा परवर का ये सॉन्ग है, और आप जानते हैं रफी साहब कितना सुंदर सुंदर गीत को गाया है, तो ये आप सबके लिए भी है।
1: Entertainment, Miss Colette will give you an exciting cabaret number.

और अब नाराज खुदा कहने करे दोस्तों क्या जरा ठहर तुझे समझाऊं। पूजा का फूल है मूफी का नाम है नाइटिगेल लता जी का सॉन्ग है।

करारे साहे जॉय मुखर्जी विजयंती माला का ये फिल्म इशारा जोंग का और ये नाम है। और दोस्तों ये सब पुराना पुराना गीत कितना अच्छा लगता। ये सॉन्ग जो है दोस्तों पुराने गीतों की बाहर सॉन्ग है जो मेरे ख्याल से न सिर्फ मुझे आपको और आपकी बगल वाला या बगल वाली को भी अच्छा लगेगे। और लातवेट में निमर्स फन मेरे दिलिए पुकारे आजा। मूवी का नाम है नागिन।

अरे आजा मेरा दिल ये पुकारे आजा। लता जी और तलत महमूद का ये जोन थे। दोस्तों हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर, और वो है अल्लाह जाने क्या होगा आगे। मनोज कुमार हरियाली और रास्ता का ये जोंग है, हमारे यारों हरियाली रास्ता का ये जोंग है।

और अल्लाह तो सब कुछ जानते हैं कि इश्त में क्या क्या हो जाती है। तो दोस्तों इश्त में बहुत कुछ हो जाते हैं। तो हम चलते हैं इसके बाद में, हम चलते हैं मुझसे इतना प्यार मत करो लता जी तलत महमूद का ये सॉन्ग है, मुझे इतना ज्यादा प्यार मत करो कि मुझे अपने आप पे गर्व हो जाए।

और इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल एक मैं हूँ जो बादल आवारा जो यहाँ से वहां तक। और वो चलते ही तदलत महमूद का और नाइटिगेल वताजी का जोंग थे। आशा परीक्ष सुनील लतीफ ने काम किए। उसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों और वो है नाइटिगेल लता मंगेशकर और को किशोर कुमार का। ये सॉन्ग है लिखा है तेरी आंखों में और आपकी आंखों में क्या है, आपकी आंखों में क्या है, ओ तो आपको पता है कि किसके सपने आप देख रहे हैं।

और दोस्तों लिखा है तेरी आंखों में, और आपकी आंखों में क्या लिखा है आपको तो पता है। साथ ही साथ हम चल रहे हैं कि पन्ना की तमन्ना में नाइटिंगेल लचा जी किशोर दादा का ये सॉन्ग है। देवानंद सिन्हा तमन ने इस फिल्म में काम किया, इस मूवी में क्या, और पूछा है कि तुम्हारे तमन्ना क्या है, पन्ना ने पूछ रहा है।

गौर मिल जाता है, हीरा मिल जाता है नैतिक लता जी का, ये जोन थे। उसके बाद प्रेम चलते है मौफी के नाम असली नकली निकति होने द्रियन शस्तक का, जिसमें देवानंद ने काम किया है। हमारे दोस्तों मौफी के नाम है असली नकली का एक सॉन्ग है परमा श्री मोहम्मद रफी और नैतिक लता जी का सॉन्ग है, जिसमें शंकर जयस्कंद का म्यूजिक पे इसे काम किया है हसरत जयपुरी के साथ में। तो हम चलते हैं मूवी का नाम है असली और नकली।

बांध लिया है मोफी के नाम थे। असली नकली के बांध पे हम जाते हैं और मधुबाला की ओर परमाश्री मोहम्मद रफी और आशा जी का सॉन्ग है अच्छा ये मैं हारी काला पानी जोंग मूवी का नाम है।

और अच्छा ये मैं हरी चलो काला पानी का ये सॉन्ग है दोस्तों ओल्ड एंड गोल्ड का प्रोग्राम आज हम चलाते हैं और ओल्ड एंड गोल्ड के बांध में अगला सॉन्ग की ओर हम जाते हैं। प्यार ही प्यार देखा है तेरी आंखों में बस प्यार ही प्यार पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है मोफी के नाम है प्यार।

प्यार ही प्यार मूवी का नाम है हमारे दोस्तों। और हाल कैसा है आपका, ये हम नहीं पूछते हैं, किशोर दादा ने पूछ रहा है। मधुबाला मूवी का ये जोन है, चलती का नाम है गाड़ी।

और हाल कैसा है आपकी आप बता दीजिए, मुझे इतना प्यार है और किससे ये आप भी मुझसे बताइए।

दोस्तों जॉनी हमारा नाम है और हम आ गए हैं अपना प्रोग्राम को लेके। अभी एक मिनट बाद, दो मिनट बाद हम आपको रिक्लामे को लेके चलेंगे, उसके बाद हम अपना सूरीनामी न्यूज आपको सुनाएंगे। और घड़ी को और देखा जाए तो हो चुका है अख मुनीतन वो सूर इन मिनट उर आज 6 अक्टूबर 2026 है। इस वक्त हम स्टूडियो पे हाजिर चुका है और हर हफ्ता की तरह आज भी आप लोग को हम देश और विदेश के समाचार को हम सुनाएंगे। हमारा प्रोग्राम आप लोग नया नया खबर सुनते रहो।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जात, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जात, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी अदाम, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी और प्यार की पैगाम। आज भी आप लोग के रेडियो फोन के माध्यम से देश विदेश के समाचार को हम बताएंगे, समझाएंगे, पढ़ेंगे और सब सब करेंगे हमारे यारों, हमारे दोस्तों। और इसी चून से हम आपको लेकर पहले चलते हैं भैया फ्लिक फेल की ओर। तो बोले जॉनी बतिया कैसे है, कैसे है बतिया? तो बतिया ऐसे है नानी, बतिया ऐसे है कि सूरीनाम में भैया हम लोग जाने ला फ्लिक तो कई गो है नवाखे मुसबलाई से संदराई तो सब कोई जाने है, सौरखन हूप के जानो, निकेरी के जानो है और तो बाकी और कुछ है ना है। लेकिन सूरीनाम में बहुत जबर समंद्रुष के इलिखाल इलिखाल फ्लिक्त फैलद हुआ बनावे है। जब पकड़ा जाए भैया तो सब जा है बॉम वॉम दाग ओके कुछ दाग ओके और फ्लिक फैलतो हमें भारी भारी होल कर दे कि जो ने अप्लेन हुआ ना उतर पाई। मौसी बकी प्लेन वहां उतरे से पहले गड़ावन दृक्ष जलरवन फिर जाए के भर दे भैया। लेकिन बात अब देख फिन एगो मिलल है गोलियार्थ खबित में और है पारा में डिस्ट्रिक्ट पारा में फिनो एगो इलिखाल लैंडिंग्स बान मिलल है सूरीनाम देश के बातचीत हुए है और मिलल है 4 तारीख अक्टूबर में। तो लैंडिंग्स बान के साथे साथ हुआ पे बोलेगा फ्लिक्टोइक के बांती के स्पोर भी मिलल है कि हुआ प्लेन उतरान है, फ्लिक्टोइक उतरान है और ब्रांस्टोफ के बारिल पाई से जेमा तेलवन वाला रहा दोस्त तेल के बारिल भी मिलल है और बताए गई एगो त्वी मूरख मोतरख त्वी मोतोरख फ्लिक तक हुआ जर के भसम हुई गे रहा दोस्त एगो प्लेन पाई से जो जर गे रहा दोस्त हुआ पे मलियन सब उतर गे रहा भैया हुई से के प्लेन हुआ में कुछ भैला सबन स्पोर बचावे खनो में आग लगाई जरा दे वन दृक्षवा उसे सौ गिना और महंगा है जो सबन उफरफूर करी से। तो यहाँ बताए गए नार्कोटिका ब्रिखांड जो सूरीनाम में है इन लिखिंग दिंग्स अरेस्टाट सी टीम एकर बारे में गए सब ओरिएंटेर करी से भैया और बताई से कि कौन ची हुआ मिलल है वेख दिल लैंडिंग्स बांध पे मिलल है और बोले खबरें स्प्रेड ओवर द लेंथ लांग मेयर फातन एंड जेरिकेंस भी रहा और बोले इन द ओम खीव वेट ओक आइड खबरान द तुई मोटोरख फ्लिक्टेक भी सबन पाई से और बताई गई है का फ्रे वेल सीकर आन खून हुए दैट इट ओम ड्रग फ्लिक्टेक खात ओम मिसीना है ड्रग फ्लिक्टेक के बारे में एंड अ ओवर लेग मद ओ एम वो सब बारी लारे गए बाकी नतीलक एक को आदमी ना पकड़ाने भैया द फोंस कम एंकल दाख ना दैट Jennifer Simon tijdens haar jaarrede voor het dienstjaar 2027 op woensdag 30 september aandacht vroeg voor de aanwezigheid van kleine vliegtuigen in het achterland. Tobole het staatshoofd gaf aan dat er meer informatie nodig is over wat zich in het binnenland afspeelt van de Suriname. Mon Simons bolera bolet loket jij binnenland me bij jij de kijk kijk illegale vliegtuigen hoe aan pe ure he. To ye baat he hamari pyare pyare Suriname ke janta. To okar baat me dosto hum tari jaila और आगे को अपना प्रोग्राम को लेके और बोले बंक जो सूरीनामे में भैया तू जइयो जइयो सूरीनाम के बंक में
और बोले हुआ पे जइयो पैसा स्तोत्र करे और या दुकानदार बाटे या कहीं पे पैसा पठाइयो या सौदा मई तो बहुत पूछताछ हुआ पे बंक करे है। तो जनता हुआ हैरान हुई गए हमार पैसा है और तू कहे इतना पूछताछ तू करे है। यहाँ बताए से फील मैं श्री नाम हर कैन हर कफूल बोले तोर पैसा है बोले तू पैसा मांगे पर फैमिली बैतलात में देवे ली फ्रांसीर बोले हम मांगेला सौदा कीने और बोले एंड दान बखेत है फ्राख उर्च बेड बैंक तब शुरू करे बंकवा पूछे कि तू पैसवा कहाँ से पहले है कहाँ तू पठाइए का करिए। तो आदमी बहुत हैरान एकर बारे में सुरीनाम में बा और ऊपर से बंकवा पूछेगा कि काहे कि तू पैसवा मांगे भरे वार फॉर इस बता ले और के हुआ ऑन फन करी तू इ पैसवा बारे में तो के फकतूर बा। तो सोमख क्लांत सुख्तन अंदर वर्दन बोस हेट इज टॉक मेन हेल्थ इज एन फील कोर de reactie en ergens is de reactie begrijpelijk, maar er is ook een andere kant die vaak onderbelicht blijven mensen. Banken ke verplichte Suriname verplichte usapke kabule jane ke verplichte jane ke ki klantua paiswa kahan paise drugs ke paisa na hoi bhaiya tu jane wetwas anmi bahut jabar kare abbe hum news mein batayli hai ki flightaik milal hega aur landings ban milal usap drugs unka paiswan kahan hai kani ohi paiswa na tu mange pathave and dan mag niet seven ke khali magel illegale na legale paisa pathave thave ke ohi mare bank ke reglement hai dat se dit gaat ondervragen mensen sommige klanten zuchten en andere worden natuurlijk boos maar de banken zijn wettelijk verplicht om alles te weten. 19 november 2022 met de wet ter voorkomen en bestrijding van de money laundering en de terrorisme financiering kortweg WMTF deze wetvervanging verving oudere regels en verplicht banken tot cliëntenonderzoek. 2024 augustus mee wijzig bij hem je beter te sluiten met de internationale standaarden. Dat betekent niet dat de bank u wantrouwt. Het betekent dat de bank moet kunnen uitleggen waarom een transactie plaatsvindt, zeker bij grote bedragen of betaling naar het buitenland. Want toen heb je het mee bij drugsdealer, loon miljonair bij jou, je sub koeien je paisa mag patawekje, de Ada Den Haag ze van drugsdealer, ja, killen wat baan. Maar daarom is de regels dat ze precies willen weten van waar komt de geld. Neem een eenvoudige voorbeeld. Ja, die collega kiet op 5 jaar Amerikaan dala. Bolle naar een bedrijf het buitenland te mangen pathawe. Bolle de bank ziet het bedrag. Maar niet automatisch het doel. Bolle bank wat khali bedrag. Wat deke bij u na deke to paiswa keke pathawe he. Als u zegt ik koop goederen voor mijn winkel. Dan is dat een begin. Ki hem dukaan ke sauda mangela. Te bolle u begin he. Maar bolle bankwa bolle ook een factuur dekha ook om een factuur vragen niet omdat u iets fout doet maar omdat de bank moet kunnen vaststellen dat de transactie past bij wat zij van u weet. To i banken bare me bhaiya elektrische geld overmaking vanaf $1000 tot €1000. Ja batawe de wet kent een specifieke regel voor incidentiële buitenlandse elektronische geldovermaking van $1000 tot €1000. Daarboven moet de bank extra informatie verzamelen, maar ook onder dat bedrag mag de bank vragen stellen. Als dat aanleiding voor is, het bedrag is niet de enige criterium. To bhaiya bataye gaye hai to bank se mange overmaak kare $1000 ya €1000 ohu bank wa to se puchega kaise ba internationaal zijn er afspraken gemaakt binnen de financiële action takes force. Bullet 2 aanbevelingen zijn belangrijk mensen. Recommendation 10 over
cliëntenonderzoek en recommendation 16 over transparantie bij de betalingen. Februari 2025 met bulletin aangepaste zoals de laagrisico klanten voor eenvoudig onderzoek mogelijk is in juni 2025 met 16 aangescherpt om internationale betalingen veiliger en transparanter te maken. Deze herziende standaard moet uiterlijk 2030 zijn uitgevoerd. To janta hum janil gussa hai madrug zilarwan ke bahut paisa bhaiya tulon jano kon kon auto chalave hai kai kai machine ghare dharal hai 10 10 auto anamiya kaam dhanda na kare hai kaliya bhata bechata bazar mein ek baris baad auto bechek shuru kari che to so jo paisa kahan se aaye bhaiya bhata bech ke to auto drive na khol paiye na bole sab auto drive ke bhata bech ke tu na 1 million jeb bhi mile ke ghumiye dollar ke banchit hai aur tu mange boli hum jai netherlands mein nahi europe mein jale ko ghar kine to u million wa paisa tu dhalle rahiye man da kai hier in netherland nik kopen op de juiste manier want dat is witwassen en voor de witwassen willen ze alles weten mensen dat wil ik even duidelijk aangeven op dit kop ja aur aage hum jai hai Jij automobiel is beschoten en aangereden door rovers. Kiet terug of vlog al vluchtauto. Ego automobiel is bhaiya beschoten oké seven dagi se. Oké dagi se chorwan dagi se aan auro beschoten en aangereden door rovers. Gis kiet terug op de vluchtauto. Dek chakalet bhaiya. Aur ek hem Facebook pe tu dekh sakega 45 jaar ke automobile se somar ke sanjha ke banchit hue hai aur rahega an Pengelstraat mein sanam mein gericht geschoten op een auto ego auto ko par dagi se met gewapende overvallers ke ya bataye bhaiya aur batawe mausi na dat se hem hadden beschoten achtervolgde het aangereden. Die drie gemaskerde mannen sloegen vervolgens op vlucht. Hun donkergrijze Toyota fiets werd later verlaten aangetroffen. Dus bij de Tjurman Dagis Otoa Peter Otoa Ola Anamia Dagis bleek wel ego inspecteur raha Skoutua kisab dage raha maar je Skoutua jai koke dage lagal te Tjurman bhagge hai yahan bataege politie inspecteur is die een witte Toyota Starlet van een zorgen hoop se उजात्रा मारत रहता में मैं कोंचियों में धल लेरा भैया तो बतिया ना तब तो लूटेरा तो के लूटी से बोले है गए को करिया करिया ते उता फिट्स बोले हम खरेम टाइट ओके अख्तर फलक करी सो तो हुआ के अब बोले है तुन दे दे एगो क्राइसिंग ऑफ द शॉप इन एटम स्ट्रेट के फरकेस लगे जे रुकल है उतरा में फिट्स हुआ जाए के अख्तर हम तो स्टिल स्टैंड ओकर पचवा जाए के रुकल है अब फियर्स एंड अख्तर आई स्पीकर इताके है कि तीन गो मस्कर दनमी ओतुआ के पीछे अपन बंदूक लेके फिर वापन लेके उतरल है और इतने में क्राइम स्पीकर हम उसको तो देख ली से और बोले एन फन हम लॉस्ट नोग एन शॉट ऑफ इट ऑटो मेंसे और बोले दे विश फियर हेड ब्रोंफिस पाथ वेग टू राइडर मार द ओवरफॉलन सेटन अचरफॉलकिंग इन द जेके डागट डागी से स्को तो इ ब्रोंफ फीस पास में से पात में से भगल है बाकी इस सब आफ्टर फॉलक कर इसे तो ओके डॉक्टर जो विनेट मोस्टरांट में प्रोबेर्ड है हम आफ टू स्कूडन द फिट्स ब्लीव देम एक्टर फॉलगन ए रेस एंड आउटर आउटएंडन फन आफ्टर ना volg kerke auto wat een pachoa mari se obole daar op stapte die die uit en schoot hij gerek op de Toyota fiets otre me schoot wat utral hij inspector wa en gerek Toyota op per dagi se obole het voertuig werd aan de rechterzijkande door kogels geraakt overvallen ontkwamen vervolgens via een Pengelstraat in de richting Brumastraat met z'n geil heen en Otoa Paige bhaiya jahan pe achterzijde van de een Sipen Stienland mee obole het de verdachten hadden de auto verlaten en nikerke bhagge volgens de politie overgestapt in een andere voertuig de Surinaamse politie is onderzocht bhaiya onderzoeker heen zeg wat gebaat mee maar kiesie paing met jij onderzoek kare ki चोरवन का है एक ही इतना अंदर सुख करी से एक न तो हुआ में कौन ची रहा ड्रिप्स रहा कि पैसा रहा कि कौन ऐसा चीज रहा नानी कि चोरवन इतना जबन
ओके अख्तर फोलक करी से भैया देखो अब बउसवा का बोले है मिनिस्टर फ्रॉम बैतलांत जाख के बउफा बोले 20 मिलियन अमेरिकन डॉलर स्लेक्स इज द स्टॉप सूरीनाम से बॉस इज फेल मेर वन बोले 20 मिलियन अमेरिकन डॉलर पाई से बोले सरनाम के जंगल में बोले और जबर वार थे बोले इस तू सेकिंग पाई से 20 मिलियन के डॉलर के फॉर नेचर बहुत इन फॉल्स मिनिस्टर मेल्विन बाउफा स्लेक्स अन बखिन सूरीनाम विल दैट द इंटरनेशनल गेमेंस्का मेर फाइनेंशियल फरंतवोर्डलिकहेड नेम फॉर हेर बहुत फन सेन बॉसन टरवेन हे लैंड रेंटो होत voor economische ontwikkeling. Ook de gemeenschappen rond het bos wonen moeten van de financiering profiteren. Tot John Ingi Jukano Rehbolupai, zoals Oesapke Bidja, hij profiteert kareke. Amake Bole zo kareke behoeddoer. Ja, hij minister Beofa, kareke pahele de kavo. Tabole jungle hamlo etrakalibul okerbaan met jahi paisoar heke. Bole 90% van het Surinaamse grondgebied met bos bedekt te houden. Beofa vindt dat een geïndustrialiseerde de landen tegenover de inspanning een grote verantwoordelijkheid moet nemen. Toe het raam paisa milel, maar paisoa bole he, juka ingik jahin jaike, makka bajai bhaiya, tulo apre jane he, toria kaise he, tulo jano bhaiya, bus chauffeur, bahut rukloos, Suriname desh mein wo bus chalave bhaiya, platform wani ka ke fitse pad pe inhal kare hai wo ek mare sannam mein bara dal lage phame ho to chalavat bhai wan saban bahut rukloos chalave hai ab dekho bole hiya batave hai rukloos rahi khatra bus chauffeur kan gevolgen hebben voor vergunning en chauffeurskaart to rukloos chalai se bus chauffeur riskeer kare ko kar rebe chana jayega और बोले हैगा फरखनिंग भी चलाया जाएगा दैट कैन वनियर द वेट दार इनफोर्स इट बोले हैगा हेड मिनिस्ट्री ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन टीसीटी के बोले हैं 5 तारीख अक्टूबर के बोले उस सब स्ट्रेंगर कंट्रोल के लिए बोले हैगा अनलोडिंग बोले उस सब देख के शफेरून फरकेर में बहुत रुक लोग चलावे हैं और बोले हैगा फिया द डायरेक्टोरेट ट्रांसपोर्ट वर द कंट्रोल सामन में द पुलिस इन अंदर अंदर बत्रोकन इंस्टेंसी आंगस्कर्प भैया बोले आंगस्कर्प्ट होएगा तो ये सब बात बोले हैं मिनिस्ट्री फान टीसीटी ओक फरफूर्स ब्रांच सेल्फ फॉर आंगस्प्रोग बेस होल्डर्स शफ़ेर्स वर्डन अपहरुपर में से तो ये बेस शफ़ेर के बारे में तुरंत इतना जोर चलावे हैं अब देखो क्या होने वाला है तो हमारी जनता हमारी प्यारे प्यारे जनता अब देखो भैया तुरंत जाने हैं पहले के एक्स मिनिस्टर फान यूसीसी एंड पॉलिसी हमना बोली ला भैया फैया पे के तहत पे हम बोली ला एक्स मिनिस्टर एनडीपी के और वो हैगा सेलोस भैया सेलोस के तुलन जानो है तो और ये बड़ी क्रिटिक लेफर करी से हमारी जनता और जो क्रिटिक लेफर करी से और वो लेफर करी से ओकर आतोम पाई के ऊपर भैया यहाँ बताई गए हैं फंदेक सिलोस बोले आतोम पाई बोले अपरे के बलाख्रक करी से बोले ऊप सोचे हैगा कि ऊ दे अनाल लेट बात ऊ मिनिस्टर के बात से का ये खाद नीट करने बपालन फॉर द मिनिस्टर व्हाट है मुदुन तस्म जेनिफर यूरिस जेनिफर फंदेक सिलोस बोले हैं एनपीएसर पुतिनी आतोम पाई के अपरे के बहुत बलाख्रक करी से बोले ऊ सोचे हैगा कि ऊ बास है मिनिस्टर के का जोन ऊ बोली हुए कि बोले वेल आल्स फोर्स van de vaste DNA-commissie onderwijs. Volgens de jurist is het niet aan het parlementariër om te bepalen wat de minister moet doen. Ja, wat hij zei, Sumana, je lekkie DNA. Zij je lekkie aan DNA, je gaat niet kunnen bepalen wie kon je minister ke mag kareke, kon je ke na mag kareke. Iemand van Dijk, Silos, bole, zega, moet vooral NPS gaan letten op dit soort zaken. आतोम पाई बोले हैगा बोले हमें बोले फोरेड कांग ना देखा है अंडरवेज में बोले लड़कन बोले हैगा twee terwijl kinderen studenten leerkrachten ouders daarvan dagelijks de gevolgen ondervinden bolle daarom vertrek ik als voorzitter voor de onderwijscommissie leidde tot verschillende politieke reactie
तो एनी पेयर भैया एगो मार्शल उस बेरे तुलन सबको जानो के तो बोले बस ट्विस्ट द लीचिंग फॉर आटोम पाई एंड स्टेल द एनपीएस दोर ती हुवेर अल 20 augustus 2026 तेदेस एगो हाउसहोल्डलिक वर्गादरिंग में तोर फोर्ट इज वाज बनूम हुवेर बफेस्टिक द बनूमिंग्स डाटम इवनिंग्स इन अ डंकवर्ड फॉर्म हां फेसबुक पाखिना तो जो तो ये सब बात अब देखो शर्मक्का की ओर हम जाए है नानी शर्मक्का की ओर जाएला हुआ के एसवीएम के पानी गंधा है भैया गंधा है कोलेर पानी जो उज्जर चाहे भरन होई गे है और एसवीएम के पानी जे तू ना पैसा भरियो भैया तो उ डायरेक्ट तो के आई के काट देगा बोनस जो शर्मक्का के है हमार मौसी लोन हमार नानी लोन बतावे यहां पे खरई में तक प्रॉब्लम हम उसे पैसे वाटर आई द क्रंग फॉल्स हैन हीफ्ट द वाटर रिकल मातक गंधा है ब्रेन होई गे है बोले फर्ट्राउन फन कम सिमसिन अंदर है सौलक दुल एंडन सोमा बोनस सेकंड डारम खनोसाक सेन वाटर तक कूपन बोले उ पानी बोले हम ना खबर पाएला बोले हम लोग के जाई कीने के परे दुकान में ऑफ कॉल ओपन वीकेंड में बोले शर्मक्का में बोले एस्प्राक में बोनस ओवर द सिचुएशन सुरिनाम से वाट लेडिंग मस्कपे मार फिंडन दैट एंड स्ट्रक्चरल ऑप्लोसिंग आउट ब्लेव बात ये बात है फोटो तो दिखावे भैया क्वारा संघ के वाटर लाइनिंग के और मकी वानी का माई गिरे एन फंड बोनस फर्स्टेल कि ओकर सिचुएशन शर्मक्का में उकाई ची एरफार करी से बोले मोमेंटेल बोले पानी प्रॉब्लम बस सफा पानी ना गिरे है बोले व्हाट अन मिस इन हेट लैंड हैवर वे हियर इन शर्मक्का नीड टू वेल द एचवीएम स्टेशन टेकर क्रीक के बात हुए दोस्तों टरवेल एसवीएम स्टेशन टेकर क्रीक हिल देख बे इस हेवन वे टेस खीन तुखंग तो खुद ड्रिंक वाटर वारम दिस सुमा क्वारा संकेना भैया ही हैगा टेकर क्रीक के वारम है थी वेना Elke andere week in het land wel de mogelijkheid om gebruik te maken schoon water ze, lekker tegen krieken en mister makkaken. Te bolle hege bewoners, maar pe bolle hege kwaliteit panieke, bolle bepaalde moment pe panieën agere dagelijks uit de handelingen moeilijk te gebruiken, bolle hege klachten ze van krise SWM mee. Volgens hen kregen ze daarbij de toezegging dat maar een oplossing zou worden. Ze zou willen even gaan zoeken. Maar een betekent een oplossing naar beneden. Telkens kregen we te horen, ja het komt goed. We krijgen een oplossing, maar er komt nooit goed. Steeds geen oplossing. Ik maar jonge Surinamers de stap genomen om in de media te verschijnen. Adjoint chief media me verschijnen. Bij leuk te Johnny lage zomaar te roe. Opbraak zei je bhaiya. Oh hem me betawe ke. Tuurlijk het to kaam he. Ik heb een dier uit tank. Ik bole als je kom kijken is er een grote modderboel. Je ziet overal vuil en zwarte vlekjes, zoveel vuil. Je kunt het niet drinken. Drinken is echt uitgesloten. Dus een mieke duro tank kwam en ze van waterleiding. Ze hebben we he. Te hitere voorste drukking. Ik heb een toilet met een panier naar Giri Bhaiya. Toen ja, betalen we de aanleiding van de klachten spraak met de diensthoofd SWM Sarmakake. Ook een naam Prichen Sarabjit Singh. Dat is niet helemaal waar. Bolle, ik ben vorige week samen met de minister ook in het veld geweest. Omdat we recent 2 klachten hebben ontvangen. Ik wil ook aangeven dat mensen naar de station kunnen komen om hun klacht door te geven. De hele mien hebben zoals gekregen. Bolle, verouderlijke leidingnetwerk. Over de oorzaak van de geur zegt de diensthoofd ten aanzien van de geur kan ik wel aangeven dat dit soms te maken heeft met de veroudering van de leidingnetwerk. De Sarmakkak en Meetjes klakker is ze. En bolle Purana, hey bhaiya, toch een nawakker. Want de Purana paisa thoro li hai. Ab dekho bhaiya, hiya ham jaila. Ego aurat bhaiya paudat raha. पौड़तरा भाई पौड़तरा अनफ्रो सोमर के संजा के गल पौड़े क्लारा क्रिकी में और पौड़त में ऊपर न आयले भैया बूढ़ के मर गए बिचारी हलफ दरी संजा के बोले सिपाही गले संदराई के और बोले ओकर लेक निकारी से बोले अन दैक प्लुक फन ब्रांडवेर इस नाले लोकेशन पर ट्रोकन ओम असिस्टेंसी से फलीनन तबरी दुख के बात है एक औरत जान गेला पौड़े
और पौड़ते में बुड़ के और बेचारी मर गए है। और ये बात है दोस्तों सूरीनाम देश के। और आगे हम जाए है भैया पोकिंग तो खवापंद बरूफे योहान अडोल्फ पेलंगस्ट्रात में। हाँ योहान अडोल्फ पेलंगस्ट्रात में जो बिस्कोतवा के बारे में बता रही ओकर बारे में जो उरुफरवारा भैया फर्स्ट कैंटीकन लगाया रहा ई बत या तो लोग के ना बता रही हम बोले ओहू तो लोग के हम जल्दी से बता दे। वन आदमी बोले कैंटी के प्रतवा ना लिख ले रहे नंबर वा भैया चोर भैया दागिस हुआ पे जहां ना चाही दागे के मौसी तब बोली चुतरिया आप दागे ना ना ना ना बहुत खराब का जहां दागी से एगो बरूफिंग भैले दम बोर्स त्रांत में सूरीनाम में तो हुआ एगो सीफ्रंट में देख यार कमान के लगल है ओकर खसलाख दिल में भैया। हाँ अब देखो खसलाख दिल मोई से अपन काम कर पावे कि ना कर पावे है हुआ पे जाए क्योंकि लगल है स्कॉटवन और खमस्कर दफरदाख तखेंगे भांदोर ओकर सोना के केती ले के मोबाइल ले के भग गए है। और बोले ओकर भाई जो रहा भयवा गए है लड़े भयो से पिस्तौल तानी से भयवा के ऊपर और दोनों भयवा को ऊपर फाल करके और ये का बोले है रोफर ऊपर से डाक के एगो भग्य भैया और हस केटिंग फ्रॉम द हस क्रूक है स्लाफ तो फॉर फरसेट से वार्नर वर्स्टलिंग ऑन स्टोन मेंस। तो आप लोग को हम एक गीत सुनाते हैं हम आते हैं बाद में।

और एक चीज तो हम भी मांगते हैं और पहला बार नहीं बेर बेर हम मांगेंगे हमारे दोस्तों हमारे यारों और वो चीज है रेडियो फहन पिछू लगाए रखना।

दोस्तों, अपना रेडियो फाउन का समाचार को लेकर हम और आगे को बढ़ते हैं। बस सुनते ही रहो, जो हर मंगलवार को हमारा प्रोग्राम और शुक्रवार को हम लाइव चलाते हैं सूरीनाम के न्यूज से लेकर और देश के समाचार आपको हम सुनाएंगे। देखो भैया, एनडीपी के आदमी लोन एनडीपी छोड़ के और जा है भैया, तो सीमोन का बोले हैं एनडीपी फोर्सेतर बोले ओफर फॉर ट्रैक मेर हिबा के और रहमानी यखाद मेंशन है बीते हुए हफ्ता में बोले कितना प्रोमिनेंट पार्टी लीडर के बोले छोड़ के एनडीपी भग है। सो आज भैया अने प्लीज सो उन फन बाउटर से रोमानो मेरहिबा और बोले हैगा पंत बैठे के कोऑर्डिनेट करत रहा और फॉर्मल का ऑफ डीलिंग फोर्सेटर लोनर्स रा महनी बोले ये दोनों छोड़ के अपन लेट मार्च का धर के और बोले चल गए हैं। NDP voorzitter Jennifer Simon zegt dat de dergelijke bewegingen binnen politieke partijen die in de coalitie zitten vaker voorkomen. Tegelijkertijd benadrukt zij dat er ook personen zijn die terug wensen te keren naar de partij. Toen als je NDP ke partij ke baren bien bolit lo ke batai dei. Ki toria kaise ek aurat ke up baat hum karila. एगो औरत भैया खूब सोना के केती पहन के चमकावत रहा मौसी, खूब चमकावत रहा, बस उतरे में भैया चमकते चम चम चम चम चमकत रहा। सो मार के भैया बस लतूर वेक पे खूब चमकाए रहेगो इन फेस तक यार के औरत और चमकावत चमकावत अपन फ्रेंड से गए नार गौरबाख खान फोर फैरतीर नहीं गौरबा फैरतीर को जो भैया महिया लिखल है और बोले हैगा उतरे में बोले ना से इन खतेदार हाद दौर खबराक बसलोटन से ही तो फर्तरेकन तब बोले फर्तरेक कली माती जाए और बोले है स्लाख तो फिर नाम प्लास इन ओ तुम बोले बढ़ गई ली तरवेल ओकर फ्रिंटवा जो नंबे बहरे खड़ा रहा ओ ही में भैया दुई मिला आयल है दुई मिला आयल है भैया बोले द फर्तरक तो बोले पिस्तौल निकाले से दुई मिला और बोले हमार फ्रेंड के ऊपर भैया स्लाख्तोफर में इस इन फुर्तेक प्लाट से नहीं मन द मान वेखर दे प्लस से नेक्ट द फर्दाख्ता हार हास्केटिंग फान द फ्राउ वेख vervolgens stapte hij in de gericht aan de Toyota Fitse, waar die tjurie hoi, bhaiya. Pahle Mark 2 se hoot ra. Ab Toyota Fitse bout in hem, want jay roof surila. Stweet Toyota Fitse ke baare mein jaa hem annani. In de eerste melding werd gesproken over meerdere verdachten, maar uit onderzoek bleek dat alleen één gewapende persoon te zijn. To saname bhaiya, keti pheti pahir ke na jayye, hiya se ye. भाऊजी लोग के बोली ले जाइए नखू नखू लाल कर लियो ओठ ओठ लाल कर लियो।

बोले है सीमोंस प्रेसिडेंट बोले हैगा अपरे के बोले बहुत लाख ऑफर करे हैं कि हमार फोर करेंगे फिर यहाँ पे कि हमें बहुत स्लेख कासा दे इसे बोले कुछ ना दे बोले बहुत स्लेख तू स्टंट में बोले हमें दे इसे देशवां वो एक मारे देशवां में तेरा प्रॉब्लम है तब मथुरा बोले मुहां बन करे मुहां बन करे बोले मुहां बन कर बोले तू हम लोग के कसूर देवे है बोले प्रॉब्लम हुआ तो एनडीपी रखेरी 2015 तो 2020 में अपरे कर ले रहा जो कर माखत रहा प्लेटफॉर्म जो रहा भैया लिंक प्लेटफॉर्म तुरंत ऊपर कर दे ले कर्जा ऊपर कर्जा ले ले और बोले चपराई के बैठ गए बाटे अब बोले कि फे यहाँ पे ही करी से ई बार बोले हैं मथुरा बोले है फिर यहाँ पे के बोले है कि एनडीपी रखेरिंग डिटेशन 2015 एंड 20 अंदर मख्त वास बलेट वार फन ओर्स्प्रोंग फन दे इसे प्रॉब्लम और बोले है प्रेसिडेंट से बखोने में स्लाख ऑफर रोल दोर आंत गेवन कि सिचुएशन हम बहुत खराब ओवर ले लिए बोले ये स्केस दैट इन 2025 अन हेल मुइलक सिचुएशन हैव ओवर गनोमन बोले मार ये हैव सेल्फ दैरबाय बायड्रागेन नेचुरली हैवन अल पार्टी in bijgedragen, maar wie heeft gezorgd voor al die schulden die als een strop om onze nek zitten? Ibad Matura bole he, bole he ga een derde van onze begroting gaat naar schulden, 1,8 miljard Amerikaan dollar ke bole hem lo karja baati bole kali karja bhara he au bole karjoa to hi loan to le rahe le het zijn schulden die gemaakt zijn door haar regering jab u voorzitter la DNA ke parlement ke au bole u periode me bole staatsschuld keer op keer stroom badlat rahe le dan moet je je wel van bewust zijn weten beseffen dat van niet erkend moeilijk is, maar herstellen veel moeilijker is. Daarom moet je altijd zorgvuldig beleid uitvoeren en beslissingen nemen die altijd in de balans zijn van zijn isabaan. Matura ego interview pe bolise dosto anewala saniwaar ke. Binnenkort anewala saniwaar ke dosto hame ego interview programma hai om 1400 uur 10 oktober ke 10 oktober ke om 1400 uur heb ik een interviewprogramma Ostaad ik Ostaad Maha Ostaad Sunder Hira hier rehega om 2 baje aur pandit hier rehega aur aur log hier rehega sath sath Suriname desh mein Nachaniya Champak bhi hum log sending mila be jo hamara Hindu Vishw jo hai hamara Hindu Vishw ke mare mein aap log jano hai Suriname desh mein kitna misbreak hue hai the jeep pe saban bhaiya ले अगरबत्ती ना अगरबत्ती का बोले है वो का बोले है आगे बार बार और कटलिस लेके भांजे हैं और का बोले है नाचे हैं मंदिर में और कटलिस लेके भांजे और रात के जाए के पर्दों फिल्म बनावे हैं तो ये सब चीज भैया हम लोग बतिया कि हम लोग के हिंदू धर्म में हम लोग के हिंदू धर्म में और लोन्ना के नाच के जो मध्य है वत होते ओकर खात हम लोग उस्ताद को उस्ताद भैया आप जो हम लोग के पुराना नगारा मास्टर है हम लोग के ढोल मास्टर देवराव रवराज सुरेन का बोले है हीरा सुंदर हीरा चंपा इस लुंडा के नाच वाला आदमी वहां फ्राक कि हम लोग के धर्म में ब्याह शादी में नौता है कानी में कौन ची हो रहे हुए है कौन ची ना हो रहे हुए है सो दैट वो हम बीच ऑफ हेल्थ नहीं करेंगे दी गस्प्रेक खा वो दिन वहां निमान फर नहीं इधर इधर इन इंसन इंसन वार्ड लाते मैं वे विल वेल ओवर ऑन हिंदुइज्म फर्टेल व्हाट नामलिक इन ब्रेलोव टेजस लुंडा नाच मुझे खान खबर दैट इज हील बलंगरेक वन आर वर्थ इट heel veel misbruik gemaakt, waardoor vandaag nu een heftige discussie is op de sociale media. Dus dat wil ik even doorgeven, beste mensen. Toen zat de zaad hem ook aan Mangila Jai. Mathura vindt dat president Jennifer Simon in haar jaren op verschillende punten ook te kort door de bocht is gegaan. Er moeten keiharde prioriteiten worden gesteld, terwijl bij de hervorming van de overheidsapparaten ook moet worden aangegeven waar er zal worden bezuinigd. तो ये बातचीत है हमारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर जनता
जो आपको हम बताते हैं. अब देखो भैया कादेंसी जाने मिशी को आल तो आंदाख मांगे फे यहाँ पे के पोलिटिकस ऊपर अर्थेस आर्नोल्ड.

अरे ओय ओय ए मैं प्यासी बन गई तो क्या। तो ये गीत आप लोग को हम सुनाते दोस्तों, एक दो समाचार हम आप लोग को और सुनाएंगे, उसके बाद में हमारा प्रोग्राम को हम बस ख़त्म करेंगे यारो।

भाई को उनकी भैया स्कारल फ्रिंडेन का मतलब है कि वो केयर फ्रिंडेन है लॉसअप पार्टनर है जेकर संग वो खस्यालक बेडी में खाली जा है सौंदर इन खफर प्लेटिंग और बोले ऑफिशियल रिलेशन सीना है ऐ दले बोले बैठ फराओ हाँ इसे बोल ली तो भोग दे से छोड़ी भैया को महीने के मानचित है साथ साथ बोरों तो बोले एक वेल नीत दाते का फर किसिंग इशू और साथ साथ भैया एको नीत

सोना खुदा है और तुल जानो हैगा फ्लाई दुबई के जो प्लेन हो जाता है इसराइल में हम लोग के इंडिया के वो पिलोट बचा ले रहे हैं और जो को पिलोट रहा वो करना हमान आल हमानी और टेरोरिस्ट रहा भैया और मात्रा प्लेन हो जाए गिरावे इसराइल के फ्लिक टाइप पे फॉल्क रियल एयर मारो फॉल्क द डिमांड

ze willen de lessen op middelbare scholen deze week worden geschraapt om tijd te maken voor een intern overleg. Kibari mee, hamari, piari, piari. Janta aise baatjeet, hè. और यहां से हमारा आज के समाचार हम खत्म करते हैं सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद राम राम नमस्कार प्यार भैया राम जॉनी नंबर 1 है हमारा नाम

0: भरने के दिन आ गए यारे तुम पर।
1: और ये गीत के बाद हम एक गीत और सुनाते हैं।

दोस्तों, पद्मश्री मोहम्मद रफी का एक सॉन्ग भी आप लोग को हम जरूर सुना देना चाहते हैं, जो आपको जरूर सुनना चाहिए। वो है और वो है तुझे प्यार करते हैं और हम सदा ही करते ही रहेंगे, और वो है मोहम्मद रफी जुमन कल्याणपुर का। ये एक गीत है जो आपको हम सुनाने जा रहे हैं।

और तुझे प्यार करते और करते ही जिंदगी भर रहेंगे। तो ये परमा श्री मोहम्मद रफी का गीत आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हैं, और वो भी जुबान पर। और जुबान पर जब चर्चे होते तो क्या होते हैं।

और आजकल क्या होता है, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे है जुबान पर, और जुबान पर चर्चे होते तो सारी दुनिया सुन लेंगे। शहरा बानो विश्वजीत का एक सॉन्ग है, अप्रैल फूल का सॉन्ग।

और उनकी पहली नजर में और क्या असर असर पड़ गई है। नाइटिंगेल लता जी का सॉन्ग है, उसके बाद में एक रीमिक्स लेकर हम आते हैं

और वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अगर मतवाली के बाद हम चलते हैं, काली तेरी चोटी है।

आवाज की दुनिया दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं फाहुन की, जिस पर हमारे भाई रॉय जी आपके सुंदर से कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी कि जॉनी नंबर

और दोस्तों आपको बतला दे कि अमित भाई और अमित जो हमारा कोलेगा साथी है, कल शाम को उसका प्रोग्राम वो फिर से शुरुआत करेगा। और कल है बुधवार, बुधवार को और शनिवार का उसका प्रोग्राम आप लोग जरूर सुनते रहना।

और दो लफ्जों की है ये कहानी। मूवी के नाम है द ग्रेट गैम्बलर। अमिताभ बच्चन सिनेमा ने इस फिल्म में काम किया है। गीत को गाया है आशा भोसले दोस्तों। और ये ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग आपको जरूर अच्छा लगेगा। आओ सुना जाए ये क्या है।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुवारे
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में।
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

और तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं दोस्तों, आउट इन गोल का प्रोग्राम यहां से हम चलाते हैं हमारे, तो यहां पर क्या है आओ सुना जाए आउट इन गोल का ये सॉन्ग और पुराने गीतों की बहार प्रोग्राम है।

जन्म ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग हम आपको सुनाते हैं हमारे यारो हमारे दोस्तों। और एक और हो जाए, ये बहुत पुराना गीत है कि अखियों का नूर है तू जोहर एन महमूद इन गोवा, अथवा सुपर हिट फिल्म में से। और ये गीत आपको हम सुनाते हैं रेडियो फाहुन के माध्यम से और यहां से सुनाते हैं।

0: ये गीत थी एक बहुत मशहूर गीत है, आओ सुना जाए ये क्या है।
1: बेकरार
0: महेंद्र कपूर
1: यूं न जाए,
0: नहीं दोस्तों
1: आपको हमारी कसम लौट
0: हेमंत कुमार।

और ये रातें, ये मौसम, और क्या क्या होता है दोस्तों, और पुराने गीतों के भाड़ सॉन्ग, हम चलते हैं झूमता मौसम मस्त महीना। और नतिगिल लता जी और परमाश्री मनाली का ये सॉन्ग है।

और झूमता मौसम मस्त महीना नैतिक लता और परमा श्री मनाली का ये जोंग आपको हम चलाए हम चाहते हैं माइती मुकेश की ओर की।

और मेरा दिल ये पुकारे आजा ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग, और कभी कभी होते हैं सर पे टोपी और वेलकम कलर दुपट्टा। आओ सुना जाए।

0: To enjoy ever.
1: अरे ओ रात के मुसाफिरी चंदन जरा बता दे मेरा कसूर क्या है और ये फैसला आप इस जरूर सुना दे। हम चलते हैं एक और राज कपूर नरगिस की ओर जो अपनी जमाना में भैया योशिया बहुत मस्त था ना, तो ये सब गीत हम आप लोग को आज ओल्ड एंड गोल्ड सुनाएंगे और इस प्रोग्राम जो है तो हम और यूसेफ बना रहे हैं। तो दोस्तों और चलते हैं और आगे को इस गीत के ओर, क्या हो गया क्या नहीं होगा तो आओ चला जाए और वो है आजा सनम।

अंत जरा मेरे हाथ थाम कर देखो, तुम जरा मेरे हाथ थाम कर तो देखो, जल जाएगी लोग महफिल में चिरागों की तरह। तो ये सब कुछ शेर भी आज हम आप लोग को कितने दिनों बाद सुनाते हैं। किसी ने यूं ही पूछ लिया हमसे, किसी ने यूं ही पूछ लिया हमसे कि दर्द की कीमत क्या है, कि दर्द की कीमत क्या है। हमने हंसते हुए कहा, पता नहीं कुछ अपने मुफ्त में दे गई। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और ये अगला गीत है ये मर्द बड़ा दिल जर्द नाटकी लता जी परमाश्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है, और मूवी के नाम है मिस मैरी।

और ये मर्द बड़ी दिल जर्द भरी नच जे लता जी परमान श्री मोहम्मद रफी मिस मेरी का मूवी का नाम है। दोस्तों आज प्यार के मूड में हम आ गए हैं, कुछ शायरी और शायरी के मूड में भी हम हैं। तो हम चलते हैं, कहते हैं कि क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं कि यही कहते हैं कि

मोहब्बत आज भी बरकरार है, क्योंकि एक तरफ प्यार आज भी वफादार है, एक तरफ प्यार भी आज वफादार है

जिंदगी मिला ना वफा मिला, ना जिंदगी मिला ना वफा मिली, क्यों हर खुशी हमसे खफा मिली, झूठी मुस्कान लिए दर्द छुपाते रहे, सच्ची मोहब्बत की क्या खूब सजा मिली। तो सच्ची मोहब्बत की सजा तो कभी कभी मिल जाते हैं हमारे दोस्तों। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और आज हम ओल्ड एंड गोल्ड की और यानी मूड में है। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला लवली प्यार ओल्ड एंड गोल्ड जोंग के ओर, और ये है और नाइटी मुकेश राज कपूर इस फिल्म में काम किए हैं, और मौफी के नाम है श्रीमन सत्यवती। ये पुराना गीत है दोस्तों, तो आप लोग को चलो माइटी मुकेश की आवाज में।

Out the heart of the millions, Mukesh, मूवी के नाम है श्रीमान सत्यवती, जिसमें राज कपूर ने काम किया है दोस्तों। और उसके बाद तो हम चलते हैं शायर और शायरी के मूड में तो हम हैं दोस्तों, लेकिन आपको हम क्या क्या सुनाएंगे, क्या नहीं सुनाएंगे, कहते हैं क्या कहते हैं, कहते हैं कि एक तरह नाम रहे जुबान पर, एक तरफ नाम रहे जुबान पर, और जैसे कि चांद रहे आसमान पर। हा, ये तो खूब है दोस्तों, एक तरह नाम रहे जुबान पर जैसे चांद रहे आसमान पर, ये जिंदगी है दोस्तों। कौन सी बात है तुम्हें ऐसी जो मुझे तुम इतनी अच्छी लगती हो। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो है मूवी के नाम है तकदीर, मूवी के नाम है तकदीर, और गीत के नाम है बोतल में क्या होता है, कभी शराब होता है, लेकिन यहां कुछ और बात है। परमा श्री मोहम्मद रफीर का

होगे, दौड़ तो प्याले फेंक तो बोतल, मेरे पीछे होलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो। हाय बोतल में बंद जाओ।

0: अब दरवाजा खोलो, राम बोलो राम बोलो राम बोलो।
1: और राम बोलो बोतल में बंद जवानी फरमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये सॉन्ग है दोस्तों। तो कहते हैं मत पूछो मेरे दिल को क्या हो गया है, दोस्तों मत पूछो मेरे दिल को क्या हो गया है, तुझे देखते ही तेरा ही हो गया है। तो ये कुछ और बात है ना हमारे यारो, एक तू ही है आदत मेरी, एक तू ही है आदत मेरी, इस दिल को है जरूरत तेरी। तो कुछ प्यार भरेगी तो आपको हम सुनाते हैं। तो हम चलते हैं अगला सॉन्ग की ओर, और ये है परमाशीर मोहम्मद रफी आशा भोसले का सॉन्ग, मूवी के नाम है अदालत। अदालत ही अदालत, जिसमें जी प्रदीप इस गीत को गाया है नरगिस के साथ में, और हम चलते हैं ये सॉन्ग की ओर।

और जब दिन हसीन दिल हो जवान परमान श्री मोहम्मद रफी का सॉन्ग है तो जलते ही दोस्तों प्यार के मूड में आ भी हो हम भी है तो कुछ प्यार के बातें करते हैं। किस्मत वाले होते हैं वो लोग दोस्तों, किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलते हैं। और दोस्तों हम चलते हैं एक गीत के और है, टैक्सी स्टाइल 1958 का परमाश्री रफी का और आशा जी का ये सॉन्ग है।

तो चले आओ, तो इसके बाद हम चलते हैं और गीत की ओर, और गीतों की ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग हम आप लोग को और सुना। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो भी एक प्यार भरी गीत है, तो ये हम आपको सुनाते। किसी एक को लेना पड़े है, किसी एक को लेना पड़ा है, ऋषि को है भैया, यूं ही नहीं पूरा है, जाता है इक्ष्ट, जो किसी और को लेना है दोस्तों, दान इज्जत ऋषि को दान मुझे खुद ओपस। तो हम चलते हैं, यहां पर एक गीत है।

0: तेरी जानी तेरी नजर ने क्या कर दिया है। और नतीजे लता फरमा श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है कि कहते हैं मेरी दुनिया और मेरी खुशियां बस तुमसे शुरू बस तुम्हीं से खत्म है। तो हम और एक गीत की ओर जाते हैं हमारे दोस्तों। और ये क्या है, ये क्या है, आप खुद ही सुनिए। और ये राजेश कुमार नगर का और मूफी के नाम तो यहां पर बताए गए हैं, आओ फिर प्यार करें, इसे कुछ लिखा है दोस्तों। और आओ
1: प्यार करो
0: यहां पर लिखा है, तो आओ सुना जाए।

और दोस्तों तुम अकेले तो कभी बाग में ना जाया करो। तो दोस्तों ये सब प्यार भरे गीतों का जोंग आज हम आप लोग को

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9735 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 3 2 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और बनवारील बनवारी बनवारी लाल मूवी का नाम ही मेरे यारो। और आज आपको हम कुछ पुराने गीतों की बाहर सॉन्ग सुनाएंगे हम। और अगले अगले अगले गीत के ओर जाते हैं और वो है वो क्या है वो क्या है शमी कपूर आज बनवा श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ ये सॉन्ग है।

0: और एक प्यारी का नगमा है और मजो की और कहानी है फलंतैन यानी कि लवली सॉन्ग हम चलाते हैं।
1: झूठा ही सही
0: और झूठा ही सही
1: के लिए कोई हमें प्यार कर ले। झूठा ही
0: सच्चे के ना।

0: और दोस्तों दफली वाले की और बांध हम चलते हैं और यानी कि लवली सॉन्ग के बाद
1: गाने को है
0: और दोस्तों जॉनी नंबर वन है हमारा नाम और आज फिर हम आ गए हैं कुछ पुराने गीतों की संगम बहार लेके। श्री मोहम्मद रफी का गाना है, रफी के गाने आपको हम आज कुछ सुनाएंगे और ढल चुकी शाम एक गम मुस्कुराने

कुछ पुराने कुछ नए गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। हमारे यारो, हमारे दोस्तों, हम चलते हैं अगला गीत की ओर। हमसे मोहब्बत करके कुमार शानू साधना सरगम का ये गीत है।

और दोस्तों हम उनसे मोहब्बत करके और मोहब्बत करके अगर मोहब्बत हो जाते हैं तो क्या होते हैं हमारे यारो, क्या होता है उसके बाद हम और एक गीत के ओर बढ़ते हैं, वो है तेरी याद दिल से और भुला ना पाए। फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता 1966 का, जिसमें मनोज कुमार, माला जीना, हेलन ने काम किए हैं।

और तेरी याद दिल से भुलाने चला हूं, जब किसी से नफरत हो जाते है, झगड़ा हो जाते हैं, तो लोग उसके याद भुलाना चाहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और होगा मत कर इतना गुरूर, जो कभी कभी लोग कितनी गुरूर करते हैं। हमारे दोस्तों अलका याग्निक पंकज उदास की ओर हम चलते हैं। और आओ मिल्क सुना जाए, मूवी का नाम है आदमी खेलो।

जरूर दोस्तों, मत कर इतना गुरूर। फिल्म के नाम है झनकार का यांगनी, पंकज उदास का गाया हुआ सॉन्ग है। इस फिल्म में रीना रॉय और गोविंदा ने काम किए हैं हमारे यारो। उसके बाद हम अगला गीत की ओर बढ़ते हैं, कुछ नए और कुछ पुराने गीतों के बहान प्रोग्राम हमारा चलेंगे। तस्वीर तेरी दिल में, तस्वीर कब लोग दिल में उतारते हैं, ये किसी से बेहद बहुत बेहद दिल से और उससे प्यार करते हैं। नैतिक गेल्ला था जी, परमाश्री मोहम्मद रफी का सुपर हिट सॉन्ग देवानंद मालधान सिन्हा का ये सॉन्ग है, आप सुनते रहो।

और तस्वीर तो तेरी दिल में आती ही रहेंगी। और नैतिक लता जी परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सुपर हिट सॉन्ग है दोस्तों। तो प्यार भरी गीतों की बहान प्रोग्राम हमारा।

उठ आई और उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या है हमारे यारों, आज हम कुछ लवली सॉन्ग के मूड में हैं। और लवली सॉन्ग कब होता है, जब प्यार बढ़ जाता है, तो हम चलते अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की ओर। अब भी या महिया, अब देखो भैया क्या है,

और आपकी आजानी से कभी कभी बहार हो जाता है और बहार के बाद में कभी कभी मार भी हो जाता है। ये तो प्यार में चलते हैं हमारे यारों, हमारे सुनने वालों, उसके बाद तो हम चलते हैं और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं, और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं। आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों इसके बाद हम और आगे को अपनी प्यार भरी गीतों के बिहार जोंग और प्रोग्राम लेकर चलेंगे, यानी कि और यहां से हम शुरुआत करते हैं कुछ सॉन्ग्स आप लोग को। और ये सॉन्ग्स है यारन यारन, यानी कि बहुत पुराना नहीं है और बहुत नया भी नहीं है, कुछ मिली जुली गीत है। दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है, गोविंदा करिश्मा कपूर ने इस फिल्म में काम किए हैं।

0: ओ मेरे दिल की चैन ओ सहनाई मेरे दिल को चुपाती लिए।
1: सुनो कहा

और आपको भी कुछ हुआ है? नजगिल लता जी किशोर दादा के ये गया हुआ जोंग है। अब आते हैं नजगिल लता जी और फरमान श्री मोहम्मद रफी का जोंग है।

मीर भी मेराम ने प्यासा। दोस्तों एक गीत को और हम बढ़ते ही अतिशन हिट फॉर द वेंस, बहुत हिट फिल्म रहा और फिल्म के नाम ही धर्मात्मा का एक सॉन्ग हम चलाने जाते हैं। तो हमारे दोस्तों हम चलते हैं फिल्म धर्मात्मा का एक गीत।

और तुम जान हमारी हो, फिल्म के नाम है धर्मात्मा का ये एक हिट फिल्म सॉन्ग हम आप लोग को सुनाए। और अगर आपकी चांद कहीं खो गया होगा तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए। फिल्म के नाम है का

श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है खोया खोया चांद, फिल्म का नाम है काला बाजार। के बाद हम चलते हैं, हम तुम्हें चाहते हैं और कैसे चाहते हैं, यहाँ पे इस गीत बताते हैं। फिल्म के नाम है कुर्बानी, ये भी एक हिट फिल्म सॉन्ग यानी कि एक हिट फिल्म थे दोस्तों। और हम चलते हैं, हम तुम्हें चाहते हैं कैसे।

ऐसे कि कैसे, ये भी एक बहुत हिट फिल्म थी दोस्तों, कुर्बानी फिल्म के नाम है। तो हम चलते हैं मोहम्मद अजीज की ओर और अलका की ओर दोस्तों, और ये भी एक हिट सॉन्ग है।

ऐ दिल और ऐ दिल है और ऐ दिल है। दिल के बाद हम जाते हैं एगो बेस्ट ऑफ देवानंद सुपर हिट सॉन्ग और वो है एवरग्रीन देवानंद हिट सॉन्ग। फिल्म के नाम है और काला बाजार का ये सॉन्ग है हमारे यारो और ये भी आप लोग को हम चलाएंगे।

और पूछ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गांव रे, और पीपल झूमे मोरे आंगना, और ठंडी ठंडी छाँव रे। तो उसके बाद हम चलते हैं, फिल्म के नाम है धर्मवीर परमाश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सॉन्ग है अनहिट सुपरहिट फिल्म।

0: और वीर का ये जोए। और हमारे दोस्तों एक गीत और हो जाए तो मेरे ख्याल से और चलेगा। नहीं नहीं दोस्त,
1: चलिए कार्यक्रम में हम पेश कर रहे हैं क्या ख्याल है अगर आपको ये गीत सुनाऊं, इस तरह से आ रहा है।

आज रपट जाई हो तो हमें ना उठाई हो। एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी निकती तीन तख्तक में से निकाले फिल्म नमक हलाल में ये शानदार गीत बप्पी लहरी के साज पर। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका हृदय से स्वागत है। तो लीजिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुना रहे हैं ये शानदार गीत इस तरह से। मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला।

मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी दोनों मिलके आपको सुनाए, याद रहेगा। आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका हृदय से स्वागत है। जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए, क्या ख्याल है? जी हाँ, क्या ख्याल है लता जी? और सुनिए ये ख़त के सिलसिला लता जी की मुखारविन से। चलिए लता जी आपको सुनाते हैं ख़त में उन्होंने क्या लिखा, क्या जवाब पाया, गया या नहीं गया, पोस्ट ऑर्डर ने भेजा या नहीं भेजा। चलिए लता जी आपको सुनाएंगे।

ने सनम को ख़त लिखा, और ये बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है कि ख़त तो भेजा गया लेकिन ख़त फिर वापस आ गया। ख़त का पता तो लिखा था लेकिन वो पता कहीं नहीं मिला। तो जाहिर है कि प्रेमी प्रेमिका की गीत होगी। शुभकामना के साथ चलिए हमने एक गीत चलाए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। अगला गीत है, बस सुन लीजिए, इस तरह से है।

यही प्यार है लता जी और किशोर कुमार जी फिल्म रॉकी में से निकाले हैं आरती बर्मन के साथ पर और पेश किया गया है ये कार्यक्रम में। चलिए क्या ख्याल है, आप भी हैं और मैं भी हूँ, मौसम के देखते हुए चलिए ये गीत।

0: कमो
1: लता जी और महेंद्र कपूर जी मिलके आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, इस तरह से हमने पेश की फिल्म धूल का फूल में से निकाल कर। जहाँ तक मेरा ख्याल है धूल का फूल बहुत लोगों ने देखे होंगे, बहुत प्यारी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म। सूत्रमेर से मीला जी आपका हृदय से स्वागत भी है, आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और

मैं द मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस दर्पण को देखा फिल्म उपासना में से निकाले हैं और ये शानदार गीत हमने चलाए हैं। एवरग्रीन किशोर कुमार का क्या ख्याल है?

एवरग्रीन किशोर कुमार मेरी बिग बिगी से बहुत प्यारी नंबर हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में। उम्मीद गीत आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो चलिए हम आपको एक गीत और सुनाते हैं। इस तरह से आ रहा है।

फिल्म शागिर्द, जी हाँ, फिल्म शागिर्द में से निकाले हैं और लता जी की आवाज़ में आपको सुनाया गया लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर फिल्म शागिर्द निगदी से इवन शस्त्र का है। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए यहाँ से हम

एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत चला। चलिए देखते हैं अगला गीत हम पेश करने वाले हैं नए पुराने गीतों के संगम में। हम आपको ये सुना रहे हैं, ये लवली चीज सुन लीजिएगा।

क्या बात है, उदित नारायण और अलका याग्निक मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत फान हिंदुस्तानी रेडियो रात के कार्यक्रम में। चलिए हम आपको एक गीत सुनाने वाले नए पुराने गीतों के संगम में। जी हाँ, नए पुराने गीतों के संगम में। क्या ख्याल है अगर आज मैं आपको ये सुनाऊँ? क्या बात है।

ना मिलो हमसे, कहीं प्यार ज़्यादा न हो जाए। कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम आपको मिलके एक गीत सुना, मैं तो मुकेश, इस तरह से फिल्म ठोकर में से निकाल कर।

रफी साहब की आवाज में और सुमन कल्याणपुर साथ दी। ये शानदार गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए, अच्छा अभी थोड़ा समय बाकी है विज्ञापन से पहले, चलिए हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

0: वाह
1: क्या बात है, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये शानदार गीत पेश हुआ और आपने सुने, उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छा लगा हो। VVV.FM.NL पर आप चून हैं, जो लोग चून की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और देखते हैं अगला गीत। अगला गीत हम चलाने वाले हैं तो क्या ख्याल है, सुनते रहना ये गाना और नाचते रहना, झूमते रहना, कुछ भी करते रहना।

वाह, प्यार तो एक दिन होना था, होना था, अगर होना था जरूर। रफी साहब और लता जी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत, और आप चून है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, और वो है एवरग्रीन किशोर कुमार, फिल्म धर्मात्मा में से 1975 का ये गीत हम आपको सुना रहे हैं।

एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज में सुनाया गया फिल्म धर्मात्मा में से निकाल कर निकली फैफी सीमित का ये गीत और पेश हुआ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए ये गीत सबसे पहले आपने सुने थे पंकज उदास की आवाज़ में और वही गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मुकेश जी ने ये गीत गाए थे लेकिन निकला नहीं था। तो जब ये गीत निकला पंकज उदास ने गाए हैं तो लोगों समझे हुआ क्या बात है। लेकिन कुछ दिन बाद जब मुकेश की आवाज़ में लोग गीत सुने तो जान गए कि हाँ मुकेश जी ने पहले गाया था और बाद में पंकज उदास ने गाया। चलो हम आपको सुनाते हैं।